बंधन तोड़े सच वसै अज्ञान अंधेरा जाए सब किस देखे किसे का जिनकिया तन साज नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खात किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे।

कहे कथे न पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्म किन न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के निस्तरे तैरच निर पौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार बिख माया

पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारद तुझ करके तू हर सुख दाता वडन श्लोक महला चौथा।

सत संगत सो मिलाप हुए लिव कटोरी अमृत परी पीती कथे विकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे

आपके नाल दोस्त आप उपदेश है आपके सुगर स्वरूप सियाणी अपना चोज कर वेख है आपे आपे सबना जिया का है जानी। श्लोक महला तीजा। एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रभु मेरा चित आवे हर सो प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी।

नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास पया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न पुले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सुमरे।

पौड़ी। आपे अर्थात तीर्थ करता आप करे स्नान, आपे संजम वर्ते स्वामी आप जपाहे नाम, आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान, जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान, जिस दी तैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा, नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए, शब्द सो चित ना लावई जित सुख वसे मन आए।

आयो सतगुरु का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अग्गे हर्षो केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सूचे आपे ही मोह पाए आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए जन नानक वडिआई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परिया आया मानस परिया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसे नो सालायो संतो जिन दूजे पाव

पौड़ी जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पा

पौड़ी आपे सब कट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग छत्ती गुबार कर वर्त्या सुनाहर ओथे वेद पुराण न सास्ता आपे हर नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दू ही बाहर अपनी एक

तुर खसमे का हुक्म पाया वी सतगुर चेते आना जाए सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए सियाना आपे मोनी वर्तदा।

वस, सब कुछ तेरे वस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो, सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो। श्लोक महला तीजा, सब कुछ हुक्मे

नानक ऐसा विरला को जोगी जिस पट प्रगट होए पौड़ी। आपे जंत उपायन आपे आधार आपे

जाप पत थक सोए गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए गुरुमुख आप वदाई देवे सोए गुरुमुख शब्द सच करनी।

के मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लै रजाए, रहाओ गुर कै शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी जिन हर नाम से

का मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहाओ, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोए, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझिया जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हों क्यों कर फिर को मिलो ए आनी जो फिर पावे।

क्यों कर हर दर्शन पावा हों जाए कुछा अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आपनड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पक्का फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी तोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले सो हर हर नाम सदा सदा समाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर तेती।

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख पति सर तप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन पर्दा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वडहंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजाने, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वडहंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाने, सेवक की अरदास प्यारे।

जिने तू जाते सदा सदा जाई बलिहारी। इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता। नानक साधु देख मन राता। वडहंस महला पंजवां।

जल शल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रव दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संसार दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु से आये रहाओ रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर प्रभ पै निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजा।

大家好，खुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमन हुक्मे मरना, नाम तेरा मन का

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता। हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावे।

सब सिंगार बनाया अमाली, बिन फिर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागनी अमाली, जिन सो रहा समाए। हों वारिया तिन सुहागनी अमाली, तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली, तिचर मैं जाने।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे त्यों।

अधिकाई काम क्रोध नित्य संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साथी वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खट्याए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले दिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आइए नाता को प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना। मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे। खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुरक दे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया। लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना। सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समाना। गावन सुरनर सुगड़ सुजाना। सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सो

राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कभो ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जो ए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हौ बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करे स्वामी तेरे द्वारे। जब

जुगें जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हों आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप अलख अपारा तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा लह

आप वाणी सिच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम, आप संदूर है, श्री रंग राती फिरे माती, उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिर के रंग रती मोये, सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोये, पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी, कंक सवारी हर हर स्यों निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया, गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई, प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मेल लई, फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये, फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता, तन बाली कोली फिर

अपागे नानक सहज सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिए सतगुरु दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिस आग बुझाए लाहा भगत है सारे बिन भक्ति सुख ना होई दूजे पत कोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एक व्यापार लाए रतन पदार्थ बन जिए जा सतगुरु देव बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा एव व्यापार।

पत कोई पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वडे आई राम ज्यो तिस दी वडे आई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बसे सोई गुर प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय सात शब्द विचारी अंतर फूटा अमृत परया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए, दिख का कीड़ा बिख्यों लागा, बिष्टा माय समाए, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा, नानक नाम रते तिन

गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच परे भंडारा गुरमुख होवे सोई बूजै सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिले होर कहना किछु न जाए नानक विण नाम है परम पुलाया एक नाम रते रंग लाए वढांस महला तीजा ए मन मेरिया आवागौन संसार है अंत सच निवेड़ा राम आपे सच्चा बख्श ले फिर होए ना फेरा राम फिर होए ना फेरा अंत सच निवेड़ा गुरमुख मिले वड्याई साचे रंग राते सहजे माते सहजे रहे समाई सच्चा मन पाया सच

ओ सब बरल है दूजे पाए कुआई राम, माता पिता सब हेत है हेते पलचाई राम, हेते पलचाई पूर्व कमाई मेट न सके कोई, जिन सृष्ट साजी सो कर वेख है तिस जेवड़ अवर न कोई, मन मुख अंधा तप तप खपे बिन शब्द सांत न आई, नानक बिन नावे सब कोई पुला माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के पज पे हर शरणाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड अवर ना दाता सेवा लागे सेवड पागे जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर शरणाई, जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया कर मैं निज कर पाया सतगुरु दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पाइन मत परवान।

राम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम, हो मन तन देवा किस काट शरीर आराम, हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए, मेरे मन बैराग पया बैरागी, मिल गुरु दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस महला चौथा। हौ गुरबिन हौ गुरबिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हौ तू सुनेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृष्ट हर एक को जाता, हर आत्म राम पछाणी। हौ गुरबिन खरी निवाणी, जिना सतगुर

बहुत सियाणप लया न जाई, कर था के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बिना।

निफल जन्म चिन बिछा गवाया ते सापक मोए मर चूरे कर होंदै रतन पदार्थ सूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिन सा दर्श ना करियो जिनी हर हर नाम ना प्याया जिनी दर्शन सतगुरु पुरुष ना पाया हम चात्रिक दीन हर

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदाता।

जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाते पाप सुन पापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप

जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम, मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम, गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा, अन दिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा, जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया, जप हर हर नाम मेरे मन पाया, हर तारो कृपा।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर कृपा।

आज कवत्य आया मंगल गाया चूके मनो आदेशा सो प्रभ पाया कथे न जाया सदा सदा संग बैसा प्रभ जी पाना सच्चा माना प्रभ हर तन सहजे जीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता कहो पाना ता कृत अघाए राम।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते सही सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सतगुरु बाणे श्लोक।

सास अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयो उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जग जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जगत लाया मोल पुन्नी पाई परु जानियड़ा कट चलाया जानी कट चलाया।

आप साजिया सचना अलख अपार गोयपुर जोड़ विछोड़न गुरबिन कोर अंधारो सूरज चंद सिरजन एन चलत विचारो सचड़ा साई सच।

आप निरालम कंधे बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाया ना भोजन।

सातन रंड न कबू बह सही ना कदे हो वह सोग ना कदे हो वह सोग अंदिन रस पोग सातन मैल समाणी जिन प्रयो जाता कर्म विधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुण सारे अपने कम समाले ना कर...

वडहंस है सच नाम उधार सत संग्रह है सत सच रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल ना लग गई नदर की थी करतार नानक हो तिन।

के मुख गिरात ऐठे दुखो दुख कमावना मोया नरक निवास। मन मुख मोहे मैले शब्द ना जानने काम क्रोध में आस सतगुर का पौच।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुर हर नाम।

सवारनहारा। सूरत महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर कट अंतर है।

फिर मिले उल्टी भाई भाई, जीवत मरे तां बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

सतगुरु सेवै तो सुख पावै नावे तो जाएगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावे हर रस साध न आया संध्या तर्पण करे गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वडभागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सतगुरु।

तुन उपजे गतमत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहो त्रै गुण माया परम पुलाया हों मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वरते सगल संसारा हों मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

आपे सेवा लाएंदा प्यारा आपे भगत उमाहा आपे गुण गावाएंदा प्यारा आपे शब्द समाहा आपे लेखन आप लिखारी आपे लेख लिखाहा मेरे मन जप राम नाम उमाहा अंदिन अंद होवे वडपागी ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ आपे गोपी कान है प्यारा बन आपे गऊ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश वजाहा कुवलिया पीड़ आप मराएदा प्यारा कर बालक रूप पचाहा आप अखाड़ा पाएदा प्यारा कर वेखे आप चोजाहा कर बालक रूप उपाएदा प्यारा चंदूर कंस केस माराहा आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूरख मुगदाहा।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

ओका हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो देश पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई,

जन नानक अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा कर पहला सिख के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किस हो जाची किस आरादी जा सबको कीता होसी। जो जो दी सह वडा वडेरा सो सो ठाकुर अरसी। निर्भव निरंकार पव खंडन सब सुख नव निर्देशी। हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही। क्या तिस्ता मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिस्ता। तिसकी पूत गवाई ऐसा तन दिया सुखदाते निखुट न कभी जाई। आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध अन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन सा।

तू सर्व जिया दयाला सब किछ कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत के पाला। सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथ के गुरु गोविंद सलाही है पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक ओंकार आधार सोई सत आराधना पाई जिसते सब किछु होए गुर पूरै जान आया पाई तिस दिन अवर न कोए रहाओ। नाम भी होने पच मोए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई।

आज सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस पर आफत होए। कोट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

जिहो बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आम तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुध पाई साकत का बतना यूं जानो जैसे पान चुलाई कोट पराध अच्छा दियो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभु सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तू।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा पे प्यो वड पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया राखे। नानक को गुरु पूरा फेटे हो सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता, तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लहिए। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा सर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण कूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जिस करे दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोह व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो कर्म पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया, जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना करत उधारा, कहो नानक गुर बिन नहीं करिए, एह पूरन तत्व बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा, किलबिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा कृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त पुगत जुगत सच पाये, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई, करण कारण सम

सिमरै सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाके प्रभ शरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई। भगत वत्सल दयाला संता की पैज रखवा आया, आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम पूजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो, जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे।

मन तै को देखा सुनमी ताहो तेरी शरणाई आया प्रभु मिलो देव उपदेशा मान न की जय शरण परी जय करे सो कला मनाय सुनमी ता जियो पिंड सब तन अर्पी जय क्यों दर्शन हर जियो पाई है कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा पारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी हर्ग जिया का दाता रे प्रतपाल नित सार संभाल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराध न जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा भरपूरी रे देखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वर्णो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुर अपने मैं मूर्ख देओ उपदेशो रे मैं मूर्ख की के तक बात है कोट परादी तरयारे गुरु नानक।

से भयानक भया, करें बेनती राख ठाकुर से हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलया, जे प्राप्त ते लया, एक रतन मोको गुरु दीना, मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर न हुआ, भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा, चरण कमल स्यो जा का मन लीना, सेजन कृत अभाई, गुण अमोल जिस हृदय न वस्या, ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनबाई, जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई। रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी, से सुखिए प्रभ सरने, जे नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए, ते महा आनंद रस करया, जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए, ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा, नानक से पकरी संतन की, हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा, राजन में राजा उरझायो, मानन में अभिमानी, लोभन में लोभी लोभायो, त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। हर जन को यही सुहावे, तेक निकट कर सेवा, सतगुरु हर कीर्तन ही तृप पावे। रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो, कूमन कूम प्यारी, खीर संग बारक है लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या में विद्यांशी रचिया, नैन देख सुख पावे, जैसे रखना साग लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी।

कृष्ण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब कौने किन में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समग्री देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

मोह अभिमाना कामे सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये पार न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरत मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु परेत मुगद कै स्रोते हर नामा मुख

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बासत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वसया, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याये। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसे काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई। राम भजन बिन काम न आवस, संग न काहू।

साध विकार बिखे रस्मा तो असंख खते कर फेरे नान किसी प्रभ पावे बिनंती काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूरन अविनाशी।

परम अंधेरा, तज प्रेम भगत प्रभु मेरा, रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया, मन तन रहे अधाई, जत कत पूर रहो परमेश्वर, कत आवे कत जाई, जब तक समझम ज्ञान पत बेता, जिस मन वसै गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, पापी पूरन पाला, कल कलेश मिटे दुख सगले, पापी जम की फाता, पहु नानक प्रभ कृपा तारी, मन तन पे बिगाता, सूरठ मैला पंजवा, करण करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वसिया अविनाशी ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसे रिद अंतर अमृत हर रस्ता के कर सेवा सेवक प्रभ अपने

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो कर माने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हो मैं बंधन के पारा। देखिवार अनक पर्दे में, पर बारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न खाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सूरत महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपुरे की बाणी, जप अंग करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाय रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सोजन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, हम दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभ हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी सारी, संतो यहा बताओ कारी, जित हो में गर्व निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर्मान्या, होवा सगल रे नारी।

रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जा के सिमरन होए आनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्ण।

सूरत महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ रहाओ विसरना ही कब हुए थे ए विद मन में पावो गुर पूरा पे क्यों वड़ पागी जन नानक कतह न पावो सूरत महला पंजवा जा के सिमरन सब कछ पाये बिरसी काल न जाई किस प्रभ त्याग अवर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिल

जगत जीवन कैसे पावे। सोरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभु सोई जाकी शरण पै सुख पाए बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संत प्रापत तिन पेटत दुर्मत खोई

तेरो बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण।

कीमत कह न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहिब सद मेरवान, बंद पाया मेरे

कहाओ पतित उदाहरण सतगुरु मेरा मोह किसका परवासा बख्श ले सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा सोरठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे गुर पूरे की सरणी उबरे कारज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार पाप उतारिया सतगुर पूरे अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच सबद सत पाखिया सोरठ महला पंजवा तय कृपाल स्वामी मेरे तिथा तय दरबार सतगुर ताप गवाया।

हर के चरण हृदय उद्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाए, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो।

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की इलाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

बाद मिल पंचों नहीं पैसा चुकाया, सिकदारों ने पति आया, उमरावो आ गए चेरा, मिल राजन राम निबेरा, अब टूडन कतो न जाई, गोविंद फेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा, ता फगली मिटी पुकारा, लबद अपनी पाई, ता कत आवे कत जाई, कह साच न्याय निबेरा, ऊहा सम ठाकुर सम चेरा, अंतर जामी जाने, बिन बोलत आप पछाने, सर्व थान को राजा, ते अनहद शब्द अग

आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नाना रहाओ। साची गुर वड्याई ताकी कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा। सगल पराछत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर त्याये। हम दिन सुकृत करिए रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया, कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला, सब जी भय दयाला जत अनद रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी, बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा, जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रभ त्याई, हर मंगल नानक दाई है। सोरठ महला पंजवा, सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी, हर की प्रेम।

संवारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम आप।

संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाय रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रहन

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर चर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्ब गुना निध गायो, सर्ब गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

आए सवाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु पांती, बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु, आगे मार्ग पावे। हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पे आख सुनाये। कहने कतन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैज रखाये। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाये। ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने विनंती। पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा। दुख कलेश सब नाथे, गुण गावत त्यावत प्रभ अपना। कार्य सगले सांठे, जग जीवन नाम तुम्हारा।

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणे, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रब अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रब पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात न काई, रहाओ करते पुरख काल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जय

दुपदे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुरपूरै कीने दाना सब कुशल के

ऐज सुभाए मिले गोपाला, नानक साच पति ने सोरस महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा ध्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम।

सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सर से होए, हर हर नाम ते आई रहाओ। जो मंगे सो लेवे, प्रभ अपनिया संता देवे, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुवाखिया। सोरठ महला पंजवा, सोई कराए जो तुद भावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे, हम बारिक तौ शरणाई, प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया

सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाप रहाई बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला अरदास सुनी।

हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब साई, पार ब्रह्म।

वाला प्रभु सतगुर दीन दयाला कैसे ओसे रखवाला प्रभु सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संभाली पूरन सबनी साई रहाओ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वडियाई पाई नानक प्रभ शरणाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम।

ही प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

आप मिलाया। कहो नानक सर्व थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया। सोरठ महला पंजवा। गरीबी गदा हमारी, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन चारी। इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा जो

नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाये जित सिमरन दर गए मुख उजल सदा सदा सुख पाये रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे ज्यों माता बाल लपतावे त्यों ज्ञानी नाम कमावे गुरपूरे ते पावे जन नानक नाम दियावे सोरठ महला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वडियाई जिन अचरज सोभ बनाई रहाओ बोले साहिब कै भाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा।

0: गुरपुरे लै तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणनी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरै तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरै तुस दिया फिर नानक दुख न सिया
1: सूरठ महला पंजवा हर मन

मैं जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिओ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे। गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरणी पाई है दर्शन पेटत होत आनंद।

शरण आई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

परवारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह की नी रहाओ मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो नै उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गनकासी उदरी ताको जस उधारो रहाओ अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने

करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहु कैसी धर्म कौन फुन करी कौन नाम गुरजा कै सिमरे पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निद जाहि जपे गत पावे और धर्म ताके सम नाहिन एह विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जा को कहत गुसाई सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा माई मैं के विद लखो गुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई। साध संग कब हो नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुन राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिखियन को तावत के विद्रोह को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

मरम न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन, काटी जम की फांसी, सोरठ मेला नावा। रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिन सत लगत ना बार।

जब ही निरतन देखियो नर को संग छार सब पागे। कहो कहा जया मन बौरे को इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस्ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो कयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

राम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हर शोक ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्याग जग ते रह निराशा, काम क्रोध जे परसे नाहिन ते कट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नरको कीनी ते एह जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यो ज्यो पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग पांदे हो, को काहू को नाही रहाओ, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु जिसके रह, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत ने रह। कर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी, ए बिद को व्यवहार बनयो है जांस्यो न्यो लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी को काम न आयो। सोरठ महला पहला कर पहला, अष्टपदियां चौथी।

ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो, मरह मसान ना जाई, तृष्णा रात ना पर कर जावा।

एको चेतै मनुआ ना डोले पावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर तारी ला।

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पाई है प्यारे।

बुरबिन अलख नालखिय पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अधिक रही हर नाए। सबको आख है आपना पाई गुरते बूझे सुजान जो भी देश से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई पावक रंचक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हरनाथ समार पचाया।

समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस नेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हों वारी हों वारने पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन दित्ता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमती पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित

पुंचाए फुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह स्यान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही कट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल न उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन दंडौत खट कर्मा रत रहता हों हों करत बंधन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार मह

तै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुर पुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सृष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप ओगन हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौं गुरमुख सदा सलाही गुर

सच नाम चित लाया बिन नावे जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग ना जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिक संग्रह करते आप खुआया। गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

फिर मिलन ना पाए नी जमे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना हर तुद

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जप।

जा। हर गुण तोट न आवे, कीमत कहन न जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे, गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी, कड पैदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई, बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा, अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक, जिस बुझाए आप हर, जन नानक कहे विचारा। गुरमुख हर सत हर।

पाए मन हथ सहज न बीजियो उखा के अगे खाए नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर

हैं सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल

तन पाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन पाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन पाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन तन

कोई आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख ना लग गए आए। नानक जे गुरमुख करे सो परवान है जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हौ बलिहारी तिन कहो जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ते आए दे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किलवित कृथा तन तन सुहावा।

पाए नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाने।

प्यारी ओ कर कर सिरे कसुद मन जो तरकत नारी वद पागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेलो सतगुरु दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजे फिर दुख ना लग गया है जमन मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए नानक हूँ बलिहारी।

हौ मैं खपै खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया।

आपके सुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई, वडियाई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरुमुख नानक आराध्या, सब आखो तन तन तन गुर सोई सोदे, राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, कर पहला इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओइले जारे ओइले गाडे, तेरी गत दोहू ना पाई।

पाए। दर्भ संच संच राजे मुए, गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पर पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम नाम

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कह कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन रहनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन

एक बस अगोचर नहीं है, बस अगोचर पाई कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे।

पिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट

पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

दुलब जन्म पुन फल पायो, बिलखा जात अभिवेक है, राजे इंद्र समसर्गे आसन, बिन हर भगत कहो के लेख है।

मारा चरमटा गांठ न जनी लोग गठा वे पनही राव पार नहीं जे तोपो नहीं राम भी ठाओ रोपो लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा हाँ बिन गांठे जाए पहुंचा रविदास जपे राम नामा मुझ जमस्यो नाही कामा राग सोरठ बाणी भगत की खनकी।

माही ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जा।

मोलत मोहत न जाना, नानक बिनवै तिसै सरेवो जाके जी पराणा, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना, रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक बिन मैं सो किस पाईए पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार। तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए। बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए। कर्म मिले आखन तेरा नाऊं,

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अद्धी परवान, नानक जाने जान सुजान, तना फ्री मैला पैला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी कूड़ बोल मल खाए,

नहीं सबका टब, खानस्त जग पृष्ट होए डूबता इव जग। कल में राम नाम सार, अच्छी तमी ते नाक पकड़े ठगन को संसार रहाओ। आंट फेती नाक पकड़े सूझते तिन लो, मगर पाछे कछ न सूझे ए पद्म अलो। खत्रिया ता कर्म छोड़िया मलेच पाखिया गही, सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराण सो दे करें वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाहीं कहे नानक दास। तनासी मेला पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। तूप मले आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति।

सहज मूरत न एक तो ही सहज पद विमल नन एक पद गंध बिन सहज पद गंध इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए तिसके चानन सब में चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए जो किस पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंगिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरे नाम वासा त्रासरी मेला तीजा कर दूजा चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद ए तन अखुट नान खुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सदबल जाए गुर कृपा से हर मन वसाए से तनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर तन परगासिया हर कृपा से वसे मन आए रहाओ अवगुण काट गुण हृदय समाए पूरे गुर कैसे सुवाए पूरे गुर की साथी बाणी सुखमन अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखो भाई दुखदा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए सब में वसे प्रभ एक को सोए गुरमति कट प्रगट होए सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिले मन मानिया त्रासरी मैला तीजा हर नाम तन निर्मल अस अपारा गुर के शब्द परे पंडारा नाम तन बिन होर सब बिख जान माया मोह जले अभिमान गुरमुख हर रस चाखे कोए तिस सदा आनंद होवे दिन राती पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ शब्द दीपक वरते ते लोए जो चाखे सो निर्मल होए निर्मल नाम हो मैं मल तोए साची भगत सदा सुख होए जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग तिस सदा हरख नाही कदे सोग आप मुख

बड़ियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उभरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सबक सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मने आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ता आप जाए। साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनों कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अचर करे तो निर्मल होई। गुरमुख

अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने, तासी मैला तीजा। काचा तन संचे मूर्ख गवार, मनमुख फूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। काचा तन गुरमति पाए, काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मनमुख फूले सब मरें गवार, पर जल डूबे ना।

कली काल विच गुरमुख पाए रहा। हम मूरख मूरख मन माहे, हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का कान बहुत अभिमान है।

जो हर सेवे संत भगत तिन के सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल काटी कटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरुष अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैवागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नाम निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मिस कह न सकें,

नानक दासन दास करो सब हम हर कथा कथा की। तनाश्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरख प्रभु स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाती पूख पुकानी। जिनके वड्डे पाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी जन नानक दास दसानी। त्रासरी मेला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली।

गाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासी मैला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह न सकू एक राती ज्यो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा। तुम हर सरवर अत आगा हम ले न सके अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जप्यो गुर रंग चलू लहराती। हर हर

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल युग का कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साख जना की। जिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरु पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ते आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर से प्रीत बन आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई। तनाश्री मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर

हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी, जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तना श्री मैला चौथा चौरा

तुर पाओ। जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हूँ तिनके सब दलिहारे जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देओ सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। सांसरी मेला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

रहाओ। आपे गुरचेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, और सब त्याग को है हर पानी। सनातनी मैला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे कोट पराग मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे जो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। धनाश्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो।

उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपताना, अतरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सराब पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, को जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो, प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला तन्या, कर कृपा दियो मोहि नामा, बंधन से छुटकाए, मन से बिसरो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बिरानी छाड़ी, अनुबुद मोह मन बासन देख, कर गढ़ा गाड़ी, रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई, ब्रह्म प्रचार पसारो पीतर, सतगुर ते सो जी पाई। सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो तीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल मैयल सर्ग निवासी, नानक रमैया डीठा। तनाश्री मैला पन्या, जब ते दर्शन पेटे साधु, परे जिनस को

प्रगास सदा सुख मन में है, सतगुरु पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद पीतर वसिया, ता दुख परम को पागा, कई प्राप्त वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा, चिंत अचिंता सोच असोचा।

पूरन हो तृप्ता में। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांसे कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनाश्री मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं त्रापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा, उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंक कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके, दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ मह सूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तना श्री मैला पंजवा, लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तक ताकी, कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। तना श्री मैला पंजवा, बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महा उद्यान अंधकार में, जिन सीधा मार्ग दिखाया। हमरे प्राण गोपाल गोविंद, इहा उहा सर्व थोक की, जिसे हमारी चिंद रहाओ। जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगना से, भगत बांछे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे, सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी, सिमरत पार कराना। शीतल शांत मां सुख पाया, संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई सास पास मन नाम समारे ए विश्राम निद पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवे सब मदे जब तक पेखो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निद पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप तगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओह डीठी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पह सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्याप माया संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनासी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझा।

मनवा बौर न कछू तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनसो प्रीत न लागे संते संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्यवा हर हर लीने संतो बार हर के दास की

नानक शरण पर्यो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार, त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हा चितारिया, पतित पुनीत किए खिल पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक, पुने पुने

सब कुल कारण हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा।

चले संग ना चाले तिन स्यों हीत जो गहराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा साथ तरम नहीं पावे दीठा चूठ तो क्यों रचो मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तरम सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछोताने जो खुद पावे सो परवान तेरे पाने नो कुर्बान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा तना श्री मैला पंजवा मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत ताके आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा अतमस्कीनी संत वडाई हर जस्तीनी अनद संतन के पगत गोविंद सुख संतन के बिन सी चिंद जह साध संतन होवे इकत्र तह हर जस गावे नाद कवित साध सभा में अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम देकर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संतां दूर तनाश्री मैला पंजवा सो कट डरे जे खत्म समारे डर डर पचे मन मुख विचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रात मिल साध संगत होवत परगास जीवन का दाता पूर्ण सवठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासे गुरमुख जाके मन तन बासे है जिसनो आप लए लड़ लाए दरगे मिले तिसे ही जाए सही पगत जे साचे भाने जम काल से पे निकाने साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार काट काटे अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरे।

कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साकी, चरण शरण नानक दास हर हर संति ए विध जाति। सना श्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए, कंस लाए गुरु राखे संसार सागर में जलन न दीने, किने न दुत्तर पाके जिनके मन साचा विश्वास, पेख पेख स्वामी की शोभा अनब सदा उलास रहाओ। चरण शरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर, दूर कथो न जाई रव रया सर्वत्र में मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बीछड़े सो संगी गनिये, दिन सजाए जो निमक में सो अलप सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे कछ ऊन न होई, सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अचल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप, जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा, नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा। सना श्री मैला पंजवा जिन तुम तेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज खेती कर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाशन पाजन थाके, पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खत्म निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कबू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर बिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करण हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। तिस त्यों ना लाय हीत, जा को किछ नाही बीत। अंत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय, तना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है सीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जाको रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार, नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद बिचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कार अठवा दो पदे।

निंदा हमने तेरे दर्शन चाहे नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाए संतन को अनज सगल ही जाए गृह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहा सर्व ठाई राव पाको कोई न पहुंचन हारा जाके अंग गुसाई जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम से आए तनाश्री मैला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पोमवंत अभिमानी राजा जाने सगल राज हमरा क्यों हर जन टेक स्वामी जे को अपनी ओट संवारे जैसा बित तैसा हुए वर्त है अपना बल नहीं हारे रहा आन त्याग पे एक आसर शरण शरण करे आए संत अनग्रह पे मन निर्मल नानक हर गुण गाए सनासी मैला पंजवा जान को हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस्ता कै जा का सतगुरु पूरा ठाकुर गा ये आत्म रंग सरणी पावन नाम से आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसे मेरे ही रे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखे ही त्रासरी मैला पंजवा जतन करे मानुख डैकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर मुह कर पावे पेख करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उत पेखे आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनाश्री मैला पंजवा नाम गुरदियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम परापत लाहा तनाश्री मैला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परो रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मैला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल राव नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मैला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध दिख जा रे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जाम है संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे सनासरी मैला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता दिस न कतहू जात सतगुरु पूरे की नींदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मैला पंजवा

तर्क गुदारी मृद कृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ते बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी सनासरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनाश्री मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भय दुख पागे सदा सदा हर जाप सनासरी मैला पंजवा चतुर दिशा कीनो बले अपना श्री ऊपर कर तारियो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद।

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सत होवे। सनासी मैला पंजवां औखी करी न देखन दे अपना बिरद समाले साथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रपाले। प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पड़े साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। सनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राग्यो हमें सरोवर पागा। तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन नानक।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सदकुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाये प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे मिल साधु बिन से शोक तनासरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम तनासरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्मसार निंदक टिकन न पावन मूले उड गए बेकार रहाओ जय जय देखो तै तै स्वामी कोई न पहुँचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की होए गया तत्चार करण हार रखवाला होआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभु तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से पार ले वो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साध पूरे। प्रभु बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। तनाश्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नान।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वडे भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा। रहाओ कोई हो आ कर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, ओही संग समाई रहाओ, कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई, बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई, तनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ, मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में, एनस रह दीवाना, दीन दयाल सदा दुख पंजन, सांस्यों मन न लगाना, जन नानक कोटन में किन्हों, गुरमुख हुए पछाना, तनासरी मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो रहाओ, पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो, हर्ष शोक ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो, चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो, तनासरी मेला नावा, अब मैं कौन उपाय करो, जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो रहाओ, जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यों दर परो, कहो नानक प्रभ बिद पछानो, तब हो पत करो, त्रासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रत्नी पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे हर रस चोग चुगे प्रभु पावे सर्वर में हंस प्राण पत्तावे क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पे निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस जाके खावन जान रहे गुरु राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम पगत कर सहज समाए सर्वर में हंस हंस में सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल इक जोगी बैसे नारे ना पुरख कहो कहू कैसे त्रिभवन जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ के शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज विचारी भगत वचल तय काटन हारे हो मैं मार मिले भगतारे अनिक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज तरम तरनी तर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागे गुर के शब्द परम पौ पागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे सात स्वरूप तनासरी मेला पहला सहज मिले मिलिया परवान ना तिस्मरण ना आवन जान ठाकुर में दास दास में सोए जै देखा तह अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाये बिन गुरु पे ते मर आये जाये रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे अकथ कथावे शब्द मिलावे हर के लोग अवर नहीं सारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन में मनुआ मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कह लागे पाए सतगुरु पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखे हथ ना पतीजे ना बहुते खे कर पांडे
जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभु मन पति आया, पर पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवत रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, हाथ मिले पावे पत्सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभु तुझ सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

उड़ जायो। मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो दे कर हाथ कर कृपा मेलो हर राया। अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ। अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे। कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे। परे रे सगल वेद नह चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। सगल आश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए। कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे। जिस पेटिय सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खे। मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी। कोई ऐसो रे सुख दाई प्रब की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी। को प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल जात।

तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान, तीर्थ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीर्थ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोये, गुणे हार परोए किसको रोये, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा, दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुरु दिखाया, मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे, बेड़ी तसंगम सत सते, आराध एकंकार साचा, नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को एके वड आखी है, हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मानिया मेरा, पूछ करें आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन टोट न पगत पनारी, पर पुर रहया सोई, नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाय

साचो साचा नाउ गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई। परवाना आया हुकुम पठाया फेर न सके कोई। आपे कर वेख सिर सिर लेख आपे सुरत बुझाई। नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो। हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकत सहाय सच में साच समाना। आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दो रहा वाद वदंदिया जियो। दो रहा चलाए हुक्म सवाए जन्म हुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा। नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजनहारा। भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए गुर के शब्द विकाने। पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहंदर साचे साचे के व्यापारी। भूख प्यासो आप क्यों दर जाए सा जियो। सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए सा जियो। सच नाम ते आए साच चवाई गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना। करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी। तनासी संत मैला पहला तिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो। मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो। लेख ना मिटई पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी। गुणी अचार नहीं रंग राती अवगुण बै बैरोसी। तन जोबन आख की छाया बिरद पै दिन पुन्या। नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या। बूढ़ी कर कालियो गुर कह पाए चलो। साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो। हर नाम ते आए ता सुख पाए पेयड़े दिन चारे। निज कर जाए बह सत पाए अंदिन नाल प्यारे। बिन पगती कर वास न होवी सुनियो लोक सभाए। नानक सरसी ता फिर पाए राती साचे नाए। फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो। रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो। गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव भगत करे। माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे। प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण पिरस्यों प्रीत प्यारी। पिर कर सो है नार जे पिर पावे जियो।

रहनी। गुर शब्द ना माने फाई फाथी, सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे, गुरमुख सहज समाए। तन सुहागन नार जिन पिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो। हर भगत सुहावी साचे भावी, पाए भगत प्रभ राती, तिर रली आला जो बन बाला, तिस रावे रंग राती। गुर शब्द विगासी सोरा वासी, फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई, तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे ता पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी अन दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे। अंदर साचा ने हो पूरे सतगुर है। सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी। हलत पलत सोबा जग अंतर राम नाम लिव लागी। हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे। सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हो मैं रोया मेरी मेरी करत विहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया। नामो नाम मिली वे।

0: अमृत हर का नाम साध संग राविए जियो पद संग साधु इक आराधु जन्म मरण दुख नाशे तुर कर्म लिखिया साथ सिखिया कट्टी जम की फासे तै परम नाथे छुटी दाठे जम पंथ मूल ना आविए दिनवंत नानक तार कृपा सदा हर गुण गाविए नितरिया तार एक नाम निरंजनो जियो तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो दुख हरत करता सुख है स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखरा पल एक माही तराया पूर रया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख तय पंजनो आप लिए लर लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अतारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वक्त रह सगल तेरी सारिया आप करता आप पुगता आप सगल विचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोलई जियो नित जपें तेरे दास पुरख अतोले जियो संत रसन बूठा आप टूठा हर रसे से ही मातिया गुर चरण लागे महा पागे सदा अंदिन जागया सद सदा सिमर तब स्वामी सास सास गुण बोले बिनवंत नानक तूर साधु नाम प्रभु अमोले
1: राग तना

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना, संत संगत राम हृदय बसाए राव। हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहानी हो रहा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई।

हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कच नाहे तेरो काल अवध्याई। अजामल गज गन का

आई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन त्रिन तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ कर।

आई। बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कढ़ावो। पाछे बौर न आवन पावो अमृत बाणी करते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो जो माया ने लिपटावो। माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला। जो कोकिल को अंब बाल

रे मन रामैया बारिक कौ जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंडी मह सागरा रहाओ नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना तर्क नचा

कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे।

का नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत

कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचेरे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहना पारी कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सत्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिशल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछौटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा।

रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने, मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पणे पज परमानंदे। पीपा कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो तूप दीप नहीं वेदा, कायो पूजो पाती, काया बोखंड खोजते नव निध पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुरु होए लखावे। कन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधननी का, अनाज मंगो सबसी का, गौ पैस मंगो लावेरी, इक साजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना ले वे मंगी। जैत सरी महला चौथा, कर पहला चौप दे, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया, गुरहास तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड पए है मनमुख, ते मोह माया नित फाखा, तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजे, जन नानक चले मिलंथा। जैत सरी मैला चौथा, हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा रहाओ। मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन कर रतन न लाखा। ते उजड़ परम मोए गावारी, माया पुअंग बिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा, हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे, मेरे प्रीतम नाम पराना। बिन नामे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जय श्री मैला चौथा,
सतगुर साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके भाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाएबा। जैत सरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी देह फिरें बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाई है सतगुर माजा, हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किल विख गए गवाजा। सतगुर साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई। सतगुरु हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंध पए है माया, बिख संचे लाए जकीड़ा। हर के अर्थ खर्च नह साके, जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जैत सरी मैला चौथा कर दूजा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा,
सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करें दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपा।

मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत संग उमा हाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमा हाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा, हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप उमा हाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक ना।

नमस्कार सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया हा हा करत बिहानी अवदह, तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक इहां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये। जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पयो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो। जैसरी मैला पंजवा। तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभ को नीरो, बेकुमार बेअंत बढ़ दाता, मन है गहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैसरी महला पंजवा। लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से प्रम अंधेरा। थान सनंतर सबनी जाई, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर ना होई है फेरा। जैसरी महला पंजवा, काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग, तजी से आनप चिंत विसारी, अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ, जो देखो तौ सगल मोय मोहियो, तौ शरण पड़ो गुर पाग, कर कृपा टहल हर लायो, तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जाओ, संत पेटे वड़ पा।

जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग जैत सरी मैला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा। जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप। हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप जैत सरी महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ। मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

ज्ञान कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत श्री मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रथ मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्यवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंत पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

आओ। महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा, कै मर्दे को विसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया, काट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुन नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब की जय, नानक हार पर्यो शरणागत अभय दान प्रभ दी जय। जय श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहा। जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा, नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा, संत कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद श्लोक। दर्शन प्यासी दिन सुरा

संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे

जय। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना, चात्रिक जीवै तिसंतिया, जन नानक गुरु पू।

आया आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सा में पाई वर लोड़ींदा आया वजी वधाई मां मंगल रहस थिया पिर दयाल सद नवरंगिया वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेरहू ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याये त्याये सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया कीने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तार।

कुटुम जतन करण माया ने कयो तुम्हें हर भगत भाव

मन वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर ना

छतर चमर तक आसनं रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरन।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दास मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े

संता संग उधार सगला दुख लथास। श्लोक भावी उदोत करणं हर रमणं।

रवान जित मिलंदड़ो मां तेरी पौड़ी सारे ला कहो कौन है जित प्रभु को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर ध्याय कै मनीष पुजाई वडे भाग।

جپنت نانک ہر ہر ہرے چھڈیو ہب آپے لگنو چرنا پاس نٹ

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो। एक मोहत ना ए मन लायो। विकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावें बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो ने बूझियो अपनायो। पर उपकार ना कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया। संग न पायो

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथमू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम और कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रह इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किछ निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कहे जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तातन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिगड़न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वैद नारायण। करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता। नानक हर हर टेक, टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन्ही समाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप, टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रत बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

लपत्यो रे मूड़े कछु ना थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंह न

देखा गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते। ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब बेता रिद्दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आनना बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ स्यान बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल।

मानस दे का ए उत्तम फल। वेद बख्यान करत साधु जन, पागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवां, माई चरण गुर मीठे, वडे पाग देवे परमेश्वर। कोट फला दर्शन गुर डीठे राव, गुण गावत अचुत अविनाशी। काम क्रोध बिनसे मद पीठे, अस्थिर पे सात रंग राते। जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते। संत दयाल जाने सब छूटे, नाम रतन पायो जन नानक। नाम बिहून चले सब मूठे, तोड़ी महला पंजवां। साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद होवे दिन राती। अंकुर पलो हमारा रहाओ, गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी। जा को अंत न पारा वारा, कर गए काढ लियो जन अपना। दिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी। बहुर न संकट द्वारा, नानक सर

काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गई सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्व न तुख। टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उधार, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने, तिनका बहुर कछ न विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजा।

कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो, रहाओ पंडित होए के देख बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव

कुम्हार के पर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणे के कर हींगा अच्छे पैसर माथे सींग गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हींग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मदे देल गो माली के कर केल आछे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद आछे गोकल मदे श्याम गो नाने मदे राम आछे राम श्याम गोविंद गो राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओहंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकत कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहा नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नारे गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन को ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान दिवायो रहाओ किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो किन किंचक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हो में रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत्व विस्तारा विचता तू पंच आप पा

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जहाँ का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कार हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित प्याए जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर सो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर प्रीत सब चूठी जित सुन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किस कीमत कहीं न जाए नाम के शरण तुम।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज तुलंग महला पहला कर पहला

मैं दर मांगत पीछिया पाए रहा केसर कुसुम मृगम हरणा सर्व शरीरी चरणा चंदन पगता ज्योति नेही सर्वे परमल करना क्या पट पांडा कहे ना कोए ऐसा भगत वर्ण में होए।

लीतना ला बिरंगाए मेरा कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए। हो कुर्बाने जाओ मेरवाना हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, तिलंग ये मानरा का

शर्म तरम दो छपल होए कूड़ सिरे प्रधान वे लालो काजिया बामना की गल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पढ़े किताबा कष्ट में करें खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवानिया एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोई ने गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक गावे मासपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याओ करे गुम सोला काया तपर टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आन अड़त्रे जान सतानवे होर भी उसकी मर्द का

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहिब साचा केले सब हर तन साला है सच सब ऊपर हर तन जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी से सार ना केते हर नामा खिन में दिन से सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए तंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिन सह सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौन नानक प्राप्त।

बोले प्राणियां कुदरातें दा सृजनहार जिन पैदा तू किया सोई दे आधार जिन उपाय मेदनी सोई कर दासार कट कट मा

हरतिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाया। आए मिले गुर सुख आए मिले, तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। हर ते गुण हर पाव दे से गुरु ते पाए, जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम तुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी, जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना, तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी तिना जी प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

लिया से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गलनाया। जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पीजे। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया। जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर केतिया रंग रलिया माने। सतगुर दाता आखिए उस परे पसाओ हो गुरु विटों सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ। सो तन गुरु सावास है हर देख नेहा हो वेख वेख गुरु विदसिया गुर सतगुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिना पुखो सब जावी। हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वल दाने हो सतगुरु को सगवा।

जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा मात पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर जीत्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

देव कतेब इस तरह पाए, दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

क्या करी, नामे के स्वामी जसवंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुदा आमद

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाक्षा सामले बरना, अस्पति गजपत नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चातर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल कल मैयल रव रहा सो।

सतगुर प्रसाद। जोग ना संसार, जोग ना दंडे, जोग ना पशु चराय, जोग ना मुंडी मूल मुडाय, जोग ना संगी वाई, अंजन मह निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाई है, गली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहाओ। जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दिशंकर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है। सतगुरु पीते का कैसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाई है, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है। नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुजी वाजे तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है। सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मई।

इन विध चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वनजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तिल।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रस मान, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर दंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठ है हर रंग चालिया, फिर बौड़ न होवी पंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठ है हर उपदेशिया, हर के त्याराओ निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभु चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग। हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाते किलिप पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत्संगत मेलो संग, निरसंगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुई महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें बहु तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जब तब संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पायो सुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा दया विस्तावे, होमे दया प्या सबक न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई। कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई। हो हर प्रभु प्यारा तू चुड़ाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक सुख।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तू ही महला चौथा, जीवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सह समाए। हर रस जन चाको जे पाई, तौ कत अनत साध लोभाई। रहाओ गुरमत रस रासो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाक्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पे।

क्या तुझ पे आग सुनाइए बुरा पला तुझ सब छू जाए जिहा को करे तिहा को पाइए। मेरे साहेब तू अंतर की दिल जाने बुरा पला तुझ सब छू जाए तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानस भगत कराई इतना सतगुर मेल सुख देवे एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुझ सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नजर करे केहा को होवे बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने सब तुझनो नित त्याए जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया तिन पवित्र पर।

कर सकी है। अपना कीता किसु न होवे, ज्यों हर पावे त्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके। ज्यों पावे तिवे बस रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया। जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सिस्त सब काजी, कोई छेवा करियो जे किसीता होवे। इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूरख मुगद।

जल फल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताण।

माने हुकम तजै अभिमान तैसे राती रलिया माने सुन सकिए प्रम मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी रहाओ सकी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ पावे सा सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रैन बिहावे कर्महीन मन मुख दुख पावे दिनों करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहा भरपूर जन नानक गावे देख दूर सुई महला पंजवा गृहवास गुर की ना हो कर किनार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस प्यासी फिर

पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर करावे, गुण कामन कर कंत रिझाया, वस्त्र लीना गुरु परम चुकाया, सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा, प्रगटिया सूर जोत उजियारा, सेज विछाई सर्द अपारा, नवरंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया, सुही महला पंजवां, उमक्यो हियो मिलन प्रवताई, खोज करो देखो प्रह जाई, सुनो।

विसाई प्रम प्रम आयो तो नजर न पाई किन विद हीरो तीर निमानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती तिर सज्जा जनता पियो मधुरो तन मतवंता तन जागे जे।

होए कृपाल प्रभ मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें तिरपाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह तिर है पाई, खोलो कपाट का मंथ है।

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन करते चरनारे, पावो दान तीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को

कुचल कठोर कामी मुक्ति जय। दर्शन देख की वड्याई, तुम सुखदाते पुरुष वाई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा, बुरे काम को ऊट खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बोर बोर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिके नाद करन सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे, रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा, कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे, परमे पूला सात फिरता। नीर बिरोले खप खप मर।

गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पामलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम दे।

पोत पोत नानक संग बसेरा, सुई महला पंजवा, सूक महल जाके ऊंच द्वारे, तामे वासे भगत प्यारे, सहज कथा प्रभ की अतली थी, विरले काहू नेत्रों दी थी, रहाओ चह गीत नाद अखारे संगा, उहा संत करें हर रंगा, चह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वरखा, दोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी, सुही महला पंजवा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेटत संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की तैल जमदूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ

जाके सिमरन कछ पौ न व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण धारी, रहाओ सात संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करना धारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी,

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रम नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रवंतर जामी काची दे मान अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कार जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान सब मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ सोए किस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन क्यों दुखर करिए मिल साधु हर नाम उचरिए रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने जो किस करे सोई पल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक किस जन बलिहारी जा कह हृदय वसै मुरारी सुही महला पंजवा गुर परमेश्वर करने हार सगल सृष्टि को दे आधार गुर के चरण कमल मन प्याए दुख दर्द स्तन ते जाए रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवे सांत सतगुर की रेण वड पागी पावे नानक गुर को सद बल जावे सुही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइए हाथ पैर हर हर जस जाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत साची पूरन निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदार है, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सकिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो, रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना।

कर कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए, सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए, दोही सराई खुनामी कहाए, जो तिस पावे सो परवान, अपनी कुदरत आपे जान रहाओ, सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह कोसे दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच साहे।

दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख अनद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक।

चरण कमल जाए बलिहारा, तुझ बिन ठाकुर कौन हमारा। रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई, पूरब कर्म लिख तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साके तीने ताप, निमख न बिसरे हर

राम रमत संतन सुख माना, नानक देवन हार पुजाना, सुही महला पंजवा। बैठी जात करे दृष्ट ना तारक, मिथ्या मोह बंदे नित पारक, माजरे पाज दिन नित रहने, जन्म पदार्थ जीत हर सहने, रहाओ सर्त विकार दो कर चारक, राम रतन रिद तिल नहीं तारक, परण पोखण संग औद बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुही महला पंजवा। साथ संग तरे पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पाप सजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याइए, पूर्व लिखित होए ता पाइए, शरण पए जप दीन दयाला, नानक जाचे संत रवाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाव जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा से, राम रसायन अंदिन माते, वहां पकर प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे, सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया, गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए, सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई, सुही महला पंजवा। करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला, रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाके संत रवाला, सुही महला पंजवा। किस दिन दूजा और ना कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ, सुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग परा

कामना तौल हरे जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभु चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज न किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दित्या जे रच लो भाए सब किसी तुम रह हाथ।

की न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार कितवो मन आशा करो जन का

जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहा, निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया, पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया, निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया, नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया, बहु विध प्रिया पर को हिरिया, दिखना क्रिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया, सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा रहाओ, बहुविध रूप रंग अपारा देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपना।

खाई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे सो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रैन सात सात गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद तिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हों सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहा वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे बिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन केट्यो।

निमुख सिमरत जी छूटे। संतोषादर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी करिए। रहाओ को तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

भुक्त करे सोई प्रभु माने। ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते मेरे राम हर संता जीवड ना कोई। पगता बने आई प्रभु अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्ष्यों आन मिलावे। माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे। जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे। जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने। कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पे निकाने। सुही महला पंजवा। माँ अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरण आई। तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई। मेरे राम राय तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा। जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ, अंध कूप से काढ़ लिए तुम। आप पे कृपा।

अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू काची देह आनी कृपा करो कब करने हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आई है तेरी गत में तू है जाने कुदरत की न पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाई के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुख लाई।

बादशाह सच्चे से पीराते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन।

पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा चरण तूर तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा मेरे राम राय ज्यों

पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करी।

अमृत वचन हृदय और धारी तौ कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारी तुझ जेवड अवर न कोई। जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन आठ

आइए गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या यो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोरथ तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर कहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सह सिदार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे सेती रतिया जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे सोच।

अवगण मुट्ठी जे फिरे बदत खाए ना पाहे जियो। गुरु रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित कठोर।

से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी दुख जियो। बाकी वाला तल भी है, सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे, बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा, खास रले मर जाए जियो। बहुरंग देख पुलाया।

नजर प्रभु ते छुटी है नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। किंचो तान विगुची है बुरा पला दो नाल जियो। दिन सब दे पैर रत्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया सबसे दे आधार जियो।

गुणसार अंतर तू वसे मन माहे सहजे रस रसे मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना जे चले गुण नाल नाहे दुख संतापना मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है

आपे रहा समाए सो विस्माद कया। ऊना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख दूर अंतर भी तू है। मैं दीजे नाम निवास।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वैता एको जाने, हो मैं दुख ना संताप है। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रहा समाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंगा अंग कमावे, दिख खटे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है, होमे विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप साचे रंग राता, गुर कैसे सुवाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। अक्सर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर तिसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए ता सतगुरु पाए जो इच्छा

आया कामन अपसुआ लियो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द समाले हर की भगत सदा।

काया अंदर समकिच वसे, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला, काया कामन सदा सुहेली गुरुमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूजे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख जित्ता लखाए, काया अंदर रतन पदार्थ पगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाये, गुर के शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा, इह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाये, मोल कित ही नाम पाये, नाही नाम पाये गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या तो करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी, राग सूही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुनिया ना साला है जो मरवंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा रे परवाह रहाओ, दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

नरके कोर पवन। हे मन जैसा सेवै तैसा होवै, तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु न जाए। मां पुरखा का बोलना होवै कितै परखाए। कोई अमृत परे भरपूर है, ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड़ पागी जे ओ

सच्चा आसनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हो मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार

मन मुख मन ना पिजई आत्मे ले चित कठोर सपै दूध पियाय अंदर विसने कोर आप करे किस आखिए आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पये किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है विच्चों ठाक राए गुर साला ही अपना निव निव लागा पाए तन मन सौंपी।

सिख गुर बिन मर जाए। जो धरती सोब करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होई सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई।

आई। जो तू सेव है सो तू है होवे, तू सेव पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कत्तर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभपूर रहो है, जत कत तत् गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

मिथ्या कै संगा, मने व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कब पाये पूरन परमेश्वर रहाओ। मोह मगन मह रहा व्यापे, अब तृष्णा कब हो नहीं त्रापे, बसे क्रोध शरीर चंडारा, अज्ञान न सूजे महा गुबारा, प्रमत व्यापत जरे किवारा, जान न पाये प्रभ दरबारा, आशा अंदेशा बंद पराना, महल न पावे फिर बेगाना, सगल व्याध के वस्त्र दीना, फिर प्यास जो जल बिन मीना, कछु सियान उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल लहो नानक अरदासे, पयो कृपाल सा।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवरना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सजना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूड़ कमावे तंग जियो, नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो, जिसनो करता विसरै, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगह पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो, आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो, मन से कबो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आवन जाना रह गए, मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाये, ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो, रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा, अष्टपदियां।

काढ़िया जिनाने हो दू जाने लगा चूर मरों से वाडिया हो ना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा फिर महिंजासरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मू दातड़ी नित हृदय रखा समाल पाप जुलाई पंद पाओ नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां।

हो कह न सका गुण तेरिया। सहिया तऊ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार पगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। रहा मोह बाद अंकार सर पर नुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार।

पहला कुचजी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हौ क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हौ कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हौ सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सहदतिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हौ इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो पाणे सोह पिहावला हौ आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह कह पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

सुख गवाए जियो। इक मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दरसावड़ा, ने लग जाए तत्ती वाओ जियो। हों आपको बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया फसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निवला।

जैसी आशा तैसी मनसा पूर पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वेसे नानक में वर्षा चा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपया करते कर पाया मेट न सके कोई जान जी ना रहने केवल रब रहा त्यो लोई माया निराशी रोए विचुनी बाली बाले हेते नानक सा सब सुख मैली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल जितनी दूर ना आवे कर पई है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत समाए राग सुही मेला पहला संत कर दूजा।

आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। कर आप नड़े खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा। दर्शन देख कहीं ने केवल जन्म मरण दुखना सा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई।

गुण संग्रहम सी खरी सरसी जहाँ रावी रंग राते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदाते तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

काम प्रभ दूर न होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपुरे सताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलोआ सिर ताजा राम हों विसन कई देख गुना अनद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

गुरु प्रसाद राग सुई छंक महला पहला कर चौथा। जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया, दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया, चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया, वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया, जिनकी आतिन देखिया जग तंदड़े लाया। हों बलिहारी साजना मीता अवरीता, ए तन जिन सू गा दिया मन लीड़ा दीता, लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे, जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गह रहे। सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता, हों बलिहारी साजना मीता अवरीता। गुणा को होवे वासला कड़वास नहीं जय, जे गुण होवन साजना मिल साज करी जय। साज करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए, पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए। जिथे जाए गए

आखणता को जाई है जे फूलड़ा होए। जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले। सुने देखे बाद कहे है दान खण मंगिया देवे। दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई। आप करे किस आखी है होर करे ना कोई। सूरी महला पहला। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई। गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई। सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले। इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले। परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई। साहिब सो सालाही है जिन कारण किया। मैं लागी मन मैले है किने अमृत पिया। मत अमृत पिया ए मन दिया गुर पे मोल कराया। आप नड़ा प्रभ सहज पछाता जामन सा फैलाया। इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया। साहिब सो सालाही है जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता। प्रीतम से मन मानिया हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारया। पंच को नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड।

दो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मन परदेसी जेती है सब देश कराए। गुरमहली कर अपने सो पर कुरलीना, सेवक सेवा तां करे सत सबद पतीना।

सोई ताकी कीमत ना पवे जे लोचे कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल न पुले जय जयकार करे तुद पावे बुरके शब्द अमूल्य हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुर अपने बिटो जिन कारे सब सवारे हर प्रभु कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कह सुनो।

तिन जन्म मरण को पागा। अंदरो दुर्मत्तु जी खोई सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी तिन अंगन हर गुण गाए। सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा। गुरते उपजे शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किलविक सब गवाए। सबको तेरा तू सबना का हो तेरा तू हमारा।

जय जिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे करमाही, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुही महला तीजा करती जा, भगत जना की हर जियो राखे।

आप लखानी। भगता की चाल सच्ची अप निर्मल नाम सच्चा मन भाया। नानक भगत सोए दर साचे जिनी सच्चो सच कमाया। हर भगता की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करे विच्चों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने पै भगत मीठी लागी अम दिन भगत।

सच्चा सबद सच्ची है शोभा साचे ही सुख होए। साच रते भगति करंगी दूजा रंग न कोई, नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवै

अंगद शब्द बजाए हर जियो कार्य आए हर गुण गावो नारी अंजन पगत करे गुर आगे सातन कंठ प्यारी गुर का शब्द वस्या कट अंतर सेजन शब्द सुहाए नाम तिन कर साधी सोहिला हर कर कृपा कर आए पगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसिया से जन निस्तरे कट कट सबद समाणी।

जे सतगुर हर मार्ग पाए। संत संगत स्यो मेल पया, हर हर नाम समाए राम। गुर कै शब्द सब जीवन मुक्त पए, हर कै नाम लिव लाए राम। हर नाम चित लाए गुर मेल मिलाए, मनुआ रता हर नाले। सुख दाता पाया मोह चुकाया, अंदर नाम समाले।

हर के पगत सवाजन निर्मल जुग जुग सधी जाते। साची पगत करें दर जापे कर दर सच्चा सोई, नाम सच्चा सोईला सच्ची सच बाणी सब दे ही सुख होई। सुई महला तीजा जे लोड़े वर बालड़िए ता गुरचरणी चितलाए राम, सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर के सह सुवाए, सापन कंठ प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के सब सिदारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन

पाया कर्म विधाता। सतगुरु सेव सदा सुख पाया, हर वस्या मन मुरारे, नानक मेल लई गुर अपने, गुर कै सब सवारे, सूही महला तीजा, सोहिलड़ा हर राम नाम, गुर सब दी विचारे राम, हर मंतनो गुरु।

बहु कृपा तारी हर कै सब सुहाए राम मिल सब सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाए।

पूर्व से इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया। सहजे अंध हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमेय गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय कान को माया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार्य आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विचर करे न जाई। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। कर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

खास शब्द लिवलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा।

नहीं राम, अंतरे हो मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम, अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया, जम मग दुख पावे।

जाई। हम पूछो अपना सतगुरु दाता किन विद उत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौ जल तरिए, गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया वडपागी, सच नाम लिवलावे मत प्रगास पई मन मानिया, राम नाम वडिआई नानक प्रभ पाया, शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, हौ मन तन देवा सतगुरै मैं मेले प्रभ गुणतासे, तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सब आसे, वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा, कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा, हौ तुझ बाजू।

चल चल परमिया मन मुख परम कुल आया नित आशा मन चितवे मन कृष्णा भुख लगाया अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक।

मेरा ठाकुर अगम दयाल है, राम राजया कर कृपा लिहो मिलाई। मेरे मन तन लोचा गुरमुखे राम राजया, हर सरदा सेज बिछाई। जन नानक हर प्रभ पानिया, राम राजया मिलिया सह सुभाई। इकत सेजे हर प्रभु राम राजया, गुर दसे हर मेले। मैं मन तन प्रेम

अडमह नाम लो गोविंद नाम मजीठा, थी रहे लाला अत गुलाला, शब्द चीन गुर मीठा, मिथ्या मोह मगन थी रहा, झूठ संग लपटाना, नानक दीन शरण कृपा निद, राख लाज पगवाना। सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना, सुन बावरे जो आया तिस जाना, नेचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचे कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो, नेचल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु हुए दा।

जल थल मैयल पूरन स्वामी कट कट रहा समाया जिस ते उपजिया तिस माए समाया कीमत कहन न जाए जिसके चलत न जाही लखने।

लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आ गए, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल

मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुखपणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर करया हर चरण जपत निस्तरया हर चरण के आए सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुवाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जप देखा तत सोई।

तू वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जैसा मत दीजै, हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण हो जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो, इतनी लोहरिया राम। हो किछ नाही, एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे।

तू पर्वत मेरा ओला राम। है बल बल जाई लख लख लख दरिया, जिन परम पर्दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर स्यो मन माना, प्रभु जी पानी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। कई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खुला, कहो नानक हौं निरपो होई, सो प्रभु मेरा ओला। सूही महला पंजवा, साजन कोठ सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता ताई सुत बंदक, जी प्राण मन पौना राम। जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्व गुणा पर पूरे, अंतर जामी सो प्रभु मेरा, सर्व रहा पर पूरे। ताकी शरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभु को बलिहारे, नानक सब कुर्बाना। ऐसा गुरु वडका जी पाये, जित मिले प्रभु जापे राम। जन्म जन्म के किलविक उतरे, हर संत तूरी नित नापे राम। हर तूरी नाइये प्रभु ते आइये, बाहर जोन ना आइये। गुर चरणी लागे प्रम को पागे, मन चिंदिया फल पाइये। हर गुण नित गाए नाम से आए, फिर सोग नाही संतापे। नानक सो प्रभु जी का दाता, पूरा जिस पर तापे। हर हरे हर गुण निदे, हर संतन के वस आए राम। संत चरण गुरु सेवा लागे, तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया, हर पूरन कृपा तारी। सफल जन्म हुआ तो पागा, हर पेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन ही मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिए, मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो, पुन्नी इच सदाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती, मरे ना आवे जाई राम। अविनाशी पाया नाम से आया, सगल मनोरथ पाए। सांस सहज आनंद कनेरे, गुरु चरणी मन लाए। पूर रहा कट कट अविनाशी, थान थन कर साई। कहो नानक कार सगले पूरे, गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी। नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेवा दिहो मेरे प्यारे, मुख हर आरा दे मेरा राम। हर आरा दे जम पंख सा दे, दुख ना व्याप कोई। जल कल मैयल पूरन स्वामी, जत देखा तत सोई। परम मोह विकार नाथे, प्रभ नेर हूते नेरा। नानक को प्रभ कृपा कीजे, नेत्र देखे दर्श तेरा। कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ए मन निर्मल होवे, कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी, सगल मंगल सो क्याना। हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सहते आना। कल मल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभु कृपा कीजे, हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे, चरण चले प्रभु मार्ग राम। हर सागर नाम हर सेवा, जो चढ़े तिस पार्ग राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे। महा विकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे। मन बांचत फल पाए सगले कुदरत, कीम अपारग। कहो नानक प्रभु कृपा कीजे, मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वड्याई, एहो तन होए वडपागा राम। एहो रंग एहो रस होगा, हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभु की शरणे, करण पारंग गोपाला। सब किस तेरा तू प्रभु मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभु कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा।
सुही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम हर जो गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत कल साचा अब चल नीव रखाई जन नानक प्रभ कहे दयाला सर्व कला बनियाई आनंदा वजह नित वाजे कार ब्रह्म मन उठाराम गुरुमुखे सच करनी सारी बिन से प्रम पैच उठाराम अनहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर मैं नव निध परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशि राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच कर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याय साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखे गामी हल्क पल सवारया बिनवंत नानक नित नाम जपिय जियो पिंड जिन तारया सुही महला पंजवा तै सागरो तै सागर तरया हर हर नाम त्याय राम बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम गुर शब्दी तरिय बहुत न मरिय चूके आवन जाना जो किछ करे सोई पर मानो तामन सहज समान दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग दिनो सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाय सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने अनग दिनो तय नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप नरे प्रभ आप सिगारी सोभावंती नारे राम सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए सुही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगासे गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी
हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुरु पूरे, नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा, सो प्रब कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रब आपे कर प्रतिपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर कंजन, अनहद बाजे सुनिए राम। अनहद तुनकारे तत विचारे, संत गोष्ट नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे, किलविक सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना, बोर न पाई है जोनी है, नानक गुरु परमेश्वर पाया, जिस पर साध छुनी है। सूही महला पंजवा, संता के कारज आग खलोया, हर काम करावन आया राम। तरक सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगर विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध दीने करते, तोत ना आवे काई राम। खास खर्चक दिलचक सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिघन सगले उठ ना थे, दुख न नेड़े आया। शांत सहज आनंद घनेरे, बिनसी पूछ सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार इतन ही किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोन हर के गुण गावे, सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे, साध संगत संग बनी, जिन उद्दम की आताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। अखर तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा, पतित पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता, उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी, नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय, बिसरना ही खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाये अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तने अमृत पी जय, बिनवंत नानक इच्छ पुनी, पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा, छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल थकी जी, ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने। पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे, पतित पावन हर बिरद सदाए, एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी, नेरे ही ते नेरा, नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। हर बिशन पाई जी हर दर्शन देखा तारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हर चरण कमल पग छारा। प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, जिस देवल अवर न कोई, आद अंत मद प्रभ रव्या, जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया, कब जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा। हर निमख ना छोड़ा जी, हर प्रीतम प्राण धारो, गुर सतगुर कहया जी।

बार राग दोष से न्यारो नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

जाए कर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सू है वेश बुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए मिठा करके।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तेजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीर सचड़ाओ उल्टी सकत स्वे कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्द सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पायनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो वे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेये सहरे बहु सोभा पाए तिस पूज करे सब संसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सृजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान पंच तात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए को आये मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजा।

वे छड़ तू कातिर लगी प्यार तू है वेश फिर किने न पायो मन मुख बज मोई गवार सतगुरु मिले सूहा वेश दया हो मैं विचो मार मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिंगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार महला तीजा मुंडे सूहा परहर लाल करो सिंगार आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार मुंड सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार नानक सातन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मन मुख मुग्ध रता हो मैं मेरा कर्म वे किस साथ न लिता सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता श्लोक महला तीजा सतियां ए नाखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पी सो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संवालन महला तीजा कंता नाल महेलिया सेती अग जलाए जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए पावे जीवो कै मरो दूरों ही पज जाए पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया नावे जेवड़ होर दात नाही किस रूप ना रिखिया नाम अखुट निधान है गुरमुख मन वस्या कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विखार चलन सार न जानी काज सवारन हार महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चली फिर पछतावा होए महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपई जे बहुता काले तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सृष्ट उपायन आपे फुनगोई जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई करता करे सोई श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या नानक एहो पटंतरा तित दी बाण गया महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंडक मारिया लग पे गवारी जिनकी तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ तौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजे तंत न आयो एवे पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग स्यों हो मैं तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप छड़ो वे आप कर आप पीने आप आहो गुरुमुख सेवा थाए पवे उन मन तप कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मन मन खसम धराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुबे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म मर

नानक एहो पन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े तित निवंदे ताल महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही किती लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेवी है सच सलग निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे सन चोर एक पौलथी नात्या देखा चढ़िए सहोर बहर धोती तूमड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अन्नात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दै जिस ए मन पाऊदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दो जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जा रे खुले हट को आवा पार जो पहुंचे सो चलन हार परम दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालिया सुपेदा सेवन देव बग्गा पतै कना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान पौड़ी काया कोट रचाया हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुआयन हों में विच व्यापे इह मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संकापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर खापे सब जग खेल रचायन

हर हर नाम सलाहिए सत्कार कमावे दूजी कहरे लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाइए।

महला दूजा जा सुख पासर आवे ओ दुख भी संभाले नानक सियाणी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक दे परवाओ है तिस तिल न कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के।

राम को नाम न कभू लीना, राम ना जपो कवन मत लागे, मर जैबे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख कर

समारा। सूही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रहन गई मत दिन भी जाए, पल गए बग बैठे आए, रहाओ काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रनिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया, रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जा को हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया पया कराया, कहो कबीर तेई नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन, थाके थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना खाक स्मार।

हो जब लग कट में सासा जे कट जाए ता पाओ न जासी हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा। कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तिन्हों लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बचन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरुष समाया उन दिया नाम लिखाई तरुण राय का दफ्तर सो दिया बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका ना विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद सह की सार सुहागन जाने अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे ना अंतर राखे अगरा देख ना सुने अपाखे सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दो पखीनी जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी पुर सलात का पंथ दुहेला संग न साथी गमन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी। सोही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यह पन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

कह साहिब जी मैं सार न जानी जो गुण खोए पाछे पछता नहीं रहा काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हो बिरह जाली फिर बिहून कथे सुख पाए जा होए कृपाल सा प्रभु मिलाए विदन कुही मुंड अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साथ संग मेली जा फिर देखा ता मेरा हो बेली वाट हमारी खरी उडीनी खन्यो तिखी बोती उस ऊपर है मार्ग मेरा शेख फरीदा पंख समार सवेरा सूही ललित बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा एक आती में पतली सह केरे बोला दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला कह फरीद सहेलियो सहो अलायसी हंस चल सी डुमना।

پہلا چوک دے کر پہلا تو سلطان کہاں ہو میاں تیری کون وڈائی

सच में रहो रजाई रहाओ जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चुकराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ न कथ न जाई जो तुझ पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई केते कुकर हो बेगाना औका स्तन पाई भगत हीन ना।

मन बेदया दयाल से थी मेरी माए, कौन जाने पीर पर आए, हम ना ही चिंत पर आए रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल फल मैयल पर पुरलीना, कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध।

चैन तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे कान तू दाता नाम परवान ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलग।

राज रूप चूठा दिन चार नाम मिले चांगन अंधियार चक छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप दिसे वे जात न होए एक एक को ना ही सौ कोए करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मन से मारिया ठाक रहे मन साचे तारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुर बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम खुले गौराने हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जियोरा रह ना सके खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैराजन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली अटक कथा कही गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों में लेट चले गुर शब्द समाए मनमुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम धनवास बिलावल महला तीजा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर पुटंग सहत स्यों जित हुन खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख वखाने गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम कुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माए निस्तारे नानक साध होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतोले क्यों तोले आ जाए दूजा होए तो सो जी पाए किसते दूजा नाही कोए किस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुखदा जाए रहाओ आप सराफ कसवती लाए आपके परखे आप चलाए आपके तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनों मेले

कहा, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना, जब अपनी जोत खींचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव के आना। आपे गुरु चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तिने कोई चाल है, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा, इक ना कर मैं देवड़े आई, इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा खाद बनाया पूरे, देखो एक समाना, इस प्रपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माए समाना, ए बाणी जो जियो जाने, इस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चौ जुगा का हुन वेड़ा, नर्म नुखानो एक निधाना, जत संजम तीरथ ओना, जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा, जुग जुग आपको अपना कर्म है।

कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल मारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हों तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाइए हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए, हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए, निज पर वासा हर गुण गाए। रंग चलू ले हर रस आए, यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुर न फेरा, नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई। हों में माया शब्द जलाई, दर्शा ते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा, हम दिन अनद होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई, पूरे गुर ते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसर वेख है, बहु न मरे ना जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सब ही लागा सहत्यान, हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुर ते नाम ते आई। जय देखा तेरे समाए, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा। धरती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कौन कौन की गत नित कही है, हर की ये पतित पवन्ना। ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे, हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पव कारण, हम पापी रात कपना। हर दासन दास बात हम करियो, जन मानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा। हम मूरख मुगध अज्ञान मती, शरणागत पुरख।

कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर, हम पाथरहीन अकर्मा, मेरे मन पज राम नाम है रामा, गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे, हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हर जतिये वड्डे कर्मा, नामहीन त्रिग जीव से तिन वड दुख सम्मा, कोय फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है, तुर पूरब लिखे वड कर्मा, गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया, जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल मैला चौथा, हमरा चित लुगत मोह बिखिया, बहु दुर्मत मैल परा, तुमरी सेवा कर न सकते हैं, प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा, मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जन ऊपर कृपा प्रभ तारी, मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी, हर देहो मति जस करा, तुमरे संग लगे से उदरे, जो संग पासत लोह तरा, साकत न होची मत मद्दम, जिन हर हर सेव न करा, ते नर पाघीन दोचारी, कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया, जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा, आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवट गुर शब्द करो, मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाये उपदेश जन करो, सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो, हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो, गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरतो, राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो, चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापे, हर मंत्र जपैनी, गुर सतगुर पार गम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी, हर जन देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नहीं, अपना पला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी, हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी, मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यो पावे तिवें बुलैनी। बिलावल महला चौथा, अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अन दिन अनद आनंदे, धर्म राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे, जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदक, विच माया फिरे फिरंदे, कृष्णा जलत किरत के बादे, ज्यो तेली बलद पहंदे, गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे, जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे, आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे, जन नानक आपे आप सब वरते, जो राखे तिवे रहंदे। ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा, पड़ताल हर तेरवा, बोलो भैया राम नाम, पतित पावनो, हर संत पगत पारनो।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिरस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक किस पगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला।

कर कृपा मोह मार्ग पावो साथ संगत के अंचल लावो क्यों करिए दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के पलक सदा फिर से हर शोक से रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्प पुयंगा हम मैं पचे दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जहाँ होए कृपाल सा गुरु मिलावे हम फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना पाया हर का मंदिर किसमें लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल जिन चाखिया किस आया फाग जो गूंगा मन में विस्माद अनद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बिलावल मैला कन्या सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न न लागे जब अल्प वेव तरत पुनीत सही गुण गाए दुर्त गया हर नाम से आए रहाओ सबनी थानी रवे आप आज जुगाव जाका वड़ पर पाप गुर प्रसाद ना होए सिंपात गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थानी उठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रभ पाले बिलावल मैला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगण से गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोए अनाथ तुरी सहन आई कर कृपा हर चरण से आई दया करो बसो मन आए मोए निर्गुण ली जय लड़ लाए रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नौ ही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै सं सदा प्रभ दसे प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम हो संसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम होताज चरण कमल संग लागी प्रीत विसर गई सब दुर्मत रीत मन सन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद राग बिलावल मैला पंजवा कर दूजा या नड़िए कह कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान का बिरसियां प्यारे राखन को तुम एक रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला सफल मूरत गुर देव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम अरादे नाम वखाने हर नाम ही मनवाता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम आराधिय निर्मल मने होए प्रगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप नेरे पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पारु पारे नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे बिलावल मैला पंजवा दिखे बन फीका त्याग रि सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड़ गई सगली सुखी ना होत जियो मान महत ना सकत ही पाई सादा दासी कियो नानक से दशोभा वंते जो प्रभ अपने कियो
हर चंदौरी चित क्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया तन तन हर साधन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बसो वड़ पागनी सखिए संता संग समाये कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाये कहे जन्म ना मरण ना आम जाना निचल सरनी पाये प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक ते आये दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतले सह सुहाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा इक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक रूप सगलो पासारा आपे बनज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब जप जाइए तप दिश पाए रहा अनेक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रसाद ही मुक्ता बिलावल महला चंदवा आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अचल ना जाई चलना आप ही दुख आप प्रगटना आप ही कट कट आप लिखना आपे अवगत आप संरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवा तूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़ पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बना पकर सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, रहाओ अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा भूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबंध कर जामी, नानक की बेनती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड पागी पाईए, मिल साधु हर नाम त्याईए, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत साख वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए, बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द

कौन सो मस्जिद प्रीतम पावो रहाओ, ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना पाहु बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विक्षवना से, अनुज करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैस सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल, दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाथा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महाविकम सागर अत पारी, उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल, कम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया, सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया, कारज सतगुरु आप सवारया। वड्डी आरजा हर गोविंद की, सुख मंगल कल्याण विचारया रहो। वंत्रण त्रिभुवन हरिया होए, सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल रहाओ। साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू तै जंजाल, आपे सतगुर आपे प्रपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुणगान, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहे से आई, नानक गुरु पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ताकी सरनाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सग ले गए, बिन से ते रोग पार, ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग, गुण गावो नित राम के ए अवखद जोग। आए बसो पर देश में ए पले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना ए पुर की टाल, बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल, सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ। जय जय कार जगत में लोचे सब जिया, सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु कछ बिघन न थिया। जां का अंग दयाल प्रभु ताके सब दास, सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास। राज बिलावल महला पंजवा। हर पंजवा चौक दे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, जो बालू कर बार,
बिनसत बार ना लाग गई ज्यों कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए करबार। रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार, दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तेज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो पंक्ति लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हो मागो, अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो, हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ पागा, मेला कदे न हो वही नह लागे दागा। प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए। रहा जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर तेरा पार जम गुण लिख तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सदगुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त किनारे, लाज परे तेरे दान से नह चित कस मारे। तुझते बाहर किस नहीं पाव का तिनहारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगध उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय, जित सेवे सुख होए कहां मन सोई गाय। कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमां। रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, निरप हसे सिर ऊपरे कछुआ नहीं बूझे, बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अतागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल सतर्ग कीता, अंदले त्रिभुवन सूजिया गुर पेट पुनीता।

सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड़।

हर रस चाखल त्रापया मन रस ले हसना बुद्ध प्रगास प्रगट भई उलट कमल बिरसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दैद सतावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राख।

राज मिलख सुतबारिया अग्नि में जाल, संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान, भगत जना का लूगरा ओड नगन ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी तहरते पट खोई, साकत स्यों मुख जोरे है अदवी चों टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उतन छूटे। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेट साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रवणी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर, हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो, संत जना की रेणका ले माथे लावो। रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो, पाप मलोवा आप त्याग संत संग समावो, सास सास न विसरे अन पते न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो, सत संतोष दया कर्म शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगटाया, जिस जन हुआ साध संग तिस पे कह हर गाया, ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया। रहाओ शरण परे की रास्ता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानस जन्माया परमाया, नानक तुस पत राशी जो प्रभ तहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लियो के। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहु रंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुण तास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई, गुरपुरे उपदेशिया सुख समर जाए। चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए।

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरह नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तो वो शीश कर कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साधक बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करें संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम एह कर्म कमावो, नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुरु पहे सहाय। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ आया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्याप है, साध संग मन तन हित है फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरु पूरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव, जा को कृपा करो प्रभ का को लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथिया बिस्माद की अमृत तृप्ता सिया ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का आ

कर पचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए।

सामग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राख त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुट जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यों तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागती जिन मन वस्तीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार निश्चित वते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत तना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीव किया अथवा मोया।

की कृपा करे काम को काटे, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविये हर निरत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग, जागन के सुपना पला बसिए प्रभ संग। रहाओ बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओह स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर। सो अंतर सो बाहर।

कर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार, भगत आराधन एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। स्वर्ण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास, रहाओ विघ्न ना को लागता गुर कै अरदास। रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। वस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूरन जगदीश। जय जयकार समय करे सत्थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा, हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद की लस्तुता जिन मारे आरोग।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या, सगला दुख गया, राखन हारे राख्या, अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया, कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी, नानक निर्भया, बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापया, नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की, ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता, भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाय नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याय है, किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है, कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है, मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे।

जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र में प्रभु गुण गहीर, नानक भगत आनंद में पेट प्रभु की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभु हुए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नान की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। पूछ अपार अगणित हर सब जीव जिस हाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राजा होए कृपाल, मार्ग संत बताया।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ नित गया रविया नित राम, सात जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साल करी सुलखनी सुमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

अभय दान पावों पुरख दात मिल संगत हर गुण गाए रसना अभय अभय गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख पंजन मोह चरण हृदय बसाए सब तले तले सब ऊपर तेरे दृष्ट दृष्ट पाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नहत लिए भगत वचन कृपाए जो जो शरण पर्यो गुरु नाम।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहा उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितार है। सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी का जैसार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम्हें मेरे परिवार है। जो तुम करो सोई पल हमरे तेक नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पतित संग।

कर कृपा अपने प्रभु की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध स्तम के जात त्रिपत अघाए पेट प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तय बिल से पहु नानक ठाकुर प्रताप बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सब गुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वड्याई मगन पे ऊहा संग माचे ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहं बुद्ध नहीं पोरा ऊंचन ऊंच बीच ना खींचा हों तेरा तू मोरा एक अंकार एक पसारा एक कै अपर अपारा एक विस्थिरन एक संपूरन एक है प्राण धारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है जासो राच माच तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ छिने में जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगोरी खावत है त्रिन को मंदर साज सवारयो पावक तने जरावत है ऐसे गर में ऐसा ठीलो फूल फूल क्या पावत है पंच दूत मूड पर छाडे केस गहे फिर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत है जाल पसार चोग विस्थारी पंखी ज्यो पहावत है कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुरु पुरख ते आवत है बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान संबोली रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो न डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली

गोविंद गोविंद मई। जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांप दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साके एक रुमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्यान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक केतले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को तिसकी लई लई सुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, तंग बंद हर सगल जंजारो। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा। गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू। गुर पूरे मेरी उल्ट करी, देखो मोहन सब कै संगे। पूर्ण न काहू सगल परी, पूरन पूर रहो कृपा निध। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता।

ज्यों कालर पीठ गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हर जन स्यों बाद उठरी है। नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम द्वार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे का दे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै अनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहा, त्यानप ते सब पई स्यानप। प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोसे, कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहा, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख।

मेला पंजवा सदा सदा जपी है प्रभु नाम जरा मरा कछ दुख ना व्याप्त है आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पाये हो निधान जन्म मरण की कटिया फांसी साची दरगह का निशान जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आहि, हर गुण गाव पर उपकार नित, किस रसना का मोड़ किस नाही रहाओ, कुल समूह उदरे छिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पर आही, संत सेवक भगत हर काके, नानक मन ला गया है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कै संगा रहाओ, छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीर्त ते कहे रजंगा, कभू न बिसरह हिये मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आदय, सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ, शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न काची बाल, दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक दाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ, जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे, निरपो होए पजो जगदीश है, तुह पदार्थ बड़ पाग लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पास रहाओ, काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चित

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वस कीने जिन सगले जंत, चरण कमल नान शरणाई राम नाम जप निर्मल मंत। बिलावल महला पंजवा। पाप पाप के राखे आप, शीतल पै गुरु चरनी लागे, राम नाम हृदय में जात रहो, कर कृपा हस्त प्रभ जी ने जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख।

दो में थाम रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जम के, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर के खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जीते संग बसे।

तीन जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, परत विकार निष्कोर पया रहा, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया।

कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक।

आगे पाछे कुशल प्रया गुर पूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नी मया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज अनंत गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्शन।

अमुक भगत अनक जन तारे सुमरह अनक मुनि अंगले टिक निरतन तन पायो प्रभु नानक अनक।

तब रस मंगल गुण गावो, अनज रूप ते आवो, नानक द्वारे आयो तो मैं लाल पायो री। मोहन रूप दिखावे

उल जियो अल मकरंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक कह हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जानो।

ना है। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही राव, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

पढ़े नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंगाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया आये।

अतीत जाने सब किसका, तन मन अर्प है एहो जिसका, ना ओ आवे ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए। बिलावल मैला की जा, अष्टपदी कर दसवां।

ने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोह व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लैया एक दृष्ट सब समकर जाने नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न पै।

नानक जंत बजाए वाजें, जित पावे तित राहे चलैया। बिलावल मैला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सतपुरखैया।

लाल जवे हर नाम पर गासिया, पांडे पाव पवै तित अय्या। दासन दास दास होए रही है, जो जन राम भगत निज तैया। मन बुद्ध अर्प तरो गुर आ गए, गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे, यो मन कृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आ गए, अनहद शब्द

जो जल तरंग जल जल है समावें, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा। सतगुर परचय मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़या। अमर पिंड पहल साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो मद

मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध कैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज

आओ जात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई,

बहुत मन चाहिया मन सन काट दियो गुर आगे है जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचन ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया। सीमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो।

सुनैया सतगुरु दया करे प्रभु मिले मैं तिस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मन तन इक बेदन मैं प्रभु देखे बिन नींद न कहिया वैदक नाटके देख पुलाने मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम जो बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभु केरी तिन अवर न पावे।

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुरु गुरु करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ के कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा तारी बहा पकड़ नानक कड़ लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी।

पंच भूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर

आओ किस में मनुआ रहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाव नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

लागै मल जै देखो तै एको एका होर जी उपाय देखो वेका फलोहार किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़े लालच लपटे लपटाए छूटे गुरमुख साज कमाए द्वादश मुद्रा।

मरे डागर मरे ना बूढ़े कोए निडर बूढ़ मरे पत खोए डर में कर कर में डर जाने तख्त निवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे ले पावे राजस्तामस सत्काल समावे ससियर के कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

आप गवाये। नानक नाम रखो उरधार, देवन हारे को जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत भूत सब दूजे लाए। आप

आए गुर प्रसादी सदा सुख पाए सच करनी साच लिवलाए सतगुर सेवे सेवड पागी होमे मार सच लिवलागी तेरे रंग राते सह सुवाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मने अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जा के मस्तक लिखिया लेख, ता के मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वर्ते अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर निशाने, सतगुर पे ते ता एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनों मार न का कह कोए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनों मार न का कह कोए, साहिब की सेवक रह शरण आई, आपे बख्शे देवड़े आई, किसते ऊपर नाही कोए, कौन डरे, डर किसका होए, गुरमति सांत वसे शरीर।

नानक गुरमुख वेखे हदूर, मेरा प्रभ सदरया भरपूर। एक सेवक एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए। एको वर्ते अवर न कोए, मन रोस की जय जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारी। सिखी वार सब सब सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए। सिखी वार सब आवे जाए, गुर शब्द ने चल सदा सच समाए। सिखी वार ता जा सच राते, बिन नामे सब परमे काचे। मन मुख मरे मर बिकती जाहे, एक न चेते दूजे लोबाए। अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्दे क्यों पाए पार। आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार। बहुते पेख करे पेख पारी, पव पव परमे काची सारी। ऐसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए। सतगुर सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए। आपे पूरा करे सोए, ए सिती वार दूजा दोए। सतगुर बाजो अंग गुबार, सिती वार सेवे मुग्ध गवार। नानक गुरमुख बूजे।

मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम मटकी डार तरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर सो रही गोयल सहज सब चिंगारिया कर जोर गुर पे कर बेनंती मिलो सास प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंड नवेल सुंदर देख फिर साधारिया सच नवेलड़िए जो बन बाली राम आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे अगाध बोध अकप कथिय सहज प्रभ गुण गावे राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम गुर के पाए चलो साथ संगूती राम तन साथ संगूती हर संगतूती संग सकी सहेलिया एक पाए एक मन नाम वसिया सतगुरु हम मेलिया दिन रैन करी ना चसा विसरे साथ साथ निरंजनो शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम कट कट लव रहा अलख अपारे राम अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है हों मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया बिलावल मेला पहला मैं मन चाओ कणा साथ विगासी राम मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम अब जत्तो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिये मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा हर नाम अंतर वस रहे देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिन वंश नान करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा

एक चित एक मन प्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभु अगम अथाह।

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखा रहे ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे गृह बने तीर व्रत पूजा बात काटे जोनी नानक प्रेम पे दया तारो मैं नाम अंधले तोहनी मुहे अनाथ प्रे अनाथ जो जानो क्यों रखो चतुराई मोहे नाहे रिजावो कह मुखो मैं चतुर सुगर सुजान देती मोहे निर्गुण गुण नहीं मैं रूप तूप ना नैन बंके जय पावे तह रख तुही जय जय जय अम्पे सगल जा को करुणा पत दक्षिण लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो मोई मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख परे हरे प्यास मेरी जी हिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित हो मित अंधारे जो आस चतुरी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कमल रसना गुण

पाए फल मंगे राम, नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम, वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम, बहा पकड़ तम ते काडया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभु अंतर जामी राम, सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम, गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम, नान

राग नाद सब सोने जान लागे सहजान राग नाद छोड़ हर सेविए ता दरगे पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चूपे मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुझ उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से व्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारी है विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक क्यों लिलाए जन्म मरण दुख कटी है सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत संगति बह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मितहर सब कोई हर के वस भगता के आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन सित कर तुद अपर कोई ना सके

गवाए। गुण रवे गुण संग्रहे ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। महला तीजा सतगुरु की सेव ना कीतिया सबल ना लगो पाओ, होमे रोग कमावना अब दीर्घ बहु स्वाओ। मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। कौड़ी सब वडियाया हर नाम विच हर गुरमुख त्याये, जे वस्त मंगिए साई पाईए जे नाम चित लाईए। गुहज गल जीव की कीचे सब गुरु पास ता सर्व सुख पाईए। गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए। जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए। हर रस की संकोच हुआ सत रसिया मन आए। सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए। सचो दैव पकड़िया गुर कहते सुवाए। नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जहाँ को नदर करे। मानस के देवते पड़े सच्ची पगत जिस दे। हमें मार मिलायन गुर के शब्द सुचे। नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई। हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई। निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई। क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई। ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई। सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चित लाए। हर सुख पल्लव से आ गया नाम विसार दुख पाए। मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए। कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए। जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए। नाम रते जन सदा सुख पाए जन नानक तिन मल।

जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है। तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कर दिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक में लाती जा अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। मैला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक छो जन पाई, सतगुरु से वो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दूख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते, शब्द न विचारे, तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया, बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वस ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागा की किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे परवाओ। श्लोक महला तीजा, इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अंबिन नाम के आया, दिखिया माए उदास है, हों में शब्द जलाया, आप करया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण पुल्ले, हों में मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चुकलाया।

नानक नाम रते से जन समझे जे आपे बख्श मिलाया महला तीजा। नानक सो साल आई है जिस वक्त सब कुछ होए, किसे सरे वो प्राणी हो किस दिन अवर न कोए। गुरुमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुख होए पौड़ी, जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खटे हो से देवालिये जुग माहे। कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिन को पाए, पराई बकीली करे अपनी प्रतीत फोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हस ना आवे, कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके। होर्थ है देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला तीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विच्चो जाए, जो किछ होए सो सहजे होए कहना किछु ना जाए। नानक तिनका आख्या

मिठा बोले अमृत बाणी, अंधन हर गुण गाओ, निज घर वासा सदा सोंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी, सो गुर हर तन हर पासो देवाया, जो कुसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले, अकै कोई क्यों देवाए, इहो हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया, जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए, तिस हर तन की वंड हथ आवे, जिसनो करते तुर लिख पाया, किस हर तन का कोई शरीक नाही, किसे का खत नाही, किसे कैसी बन्ने रोल नाही, जे को हर तन की वकीली करे, किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया, हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

पंच चोर तिना कर मोहन हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचे रचन दुस्ता सेती तिरहड़ी जंक्षो वाज करन नानक साकत नरक में जम बजे।

तिस सात गिरास सदा मन वसै जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभु वसै हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

बिलावल। विद्या ना पढ़ो बाद नहीं जानो, हर गुण का फते सुनत बौरानो। मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक सियानी मैं बौरा। मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ, आप न बौरा राम कियो बौरा। सतगुरु जार गयो परम मोरा, मैं बिगड़े अपनी मत कोई। मेरे परम पूलो मत कोई, सो बौरा जो आप ना पछाने। आप पछाने ता एक कह जाने, अब है न माता सो कबू न माता। कह कबीर राम रंग राता। बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंडा। अजो विकार न छोड़े पापी मन मंगा। क्यों छूटो कैसे तरों पौजल निरपारी। राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी। रहाओ विषय विषय की बात सुना तजी न जाई। अनेक जतन कर राखी है फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का। के जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। तुम समसर नाही दयाल मोहि समसर पापी। बिलावल नित पुट कोरी गागर आने लीपत जियो। गयो ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटियो। हमारे कुल कौने राम के हो। जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव। सुनो जिठानी सुनो जिरानी, अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए। इन मुंडिया क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी। सो गुरु नाम दयो, संत प्रहलाद की पैज जिन राखी। हरनाशक नख बिदरयो, करके देव पितर की छोड़ी। गुरु को शब्द लयो, कहत कबीर सगल पाप खंडन। संतें ले उदरे हो। बिलावल को हर समान नहीं राजा, एक ऊपर सब दिवचार के चूठे कर दिवाजा। रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले, तीन पवन पर छा जा। हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा। चेत अचेत मूर मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। कह कबीर संसा परम क्यों को, रूप है लाद निवाजा। बिलावल राख लो हम ते बिगरी, सील तरम जब पगत न कीनी। हो अभिमान तेड पगरी रहाओ, अमर जान संखी एकाया। ए लिखिया का की जगरी, जिन्हें निवाज साज हम किए। किसे विसार अवर लगरी, संगत तोए साध नहीं कहियो। शरण परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए गिनती सुनियो। मत पालो जम की खबरी। बिलावल दरमा दे खांडे दरबार।

कह कबीर तुम समरस दाते, चार पदार्थ देख न बार बिलावल, डंडा मुंदरा सिंसा आधारी, क्रम कै पाए पवे तेज तारी, आसन पवन दूर कर बवरे, छोड़ कपट नित हर पद बवरे, राव जिन तू जाते सो त्रिगुण भोगी, कह कबीर के सो जग जोगी, बिलावल इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत ना उपजे जन को, जन कहा करे बेचारे, राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया, त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी, किस माया को दृढ़ कर राखो, बांधे आप बचनी, क्या खेती क्या लेवा दई, परपंच झूठ घुमाना, कह कबीर के अंत बिगूते, आया काल निदाना, बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप, परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप, रे मन हर पाजे परम सजो जग जीवन राम रहाओ, आवश्यक न दी सही न दी सह जात, जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात, लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार, कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी, जीवक सुन समान्या गुरु साची जागी, रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई, कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई, तृप्ति संग मैं पेखिया कट हूँ कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माय त्यागी, आप आपते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना, बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे, सो जन क्यों डोले देव, मानो सब सुख नौ निध ता कह सहज, सहज जस बोले देव रहाओ, तब ए मत जाओ सब मैं पेख है, कुटल गांठ जब खोले देव, बारंबार माया ते अटके ले नर जा मन तोले देव, जे ओ जाए तही सुख पावे, माया तास न चोले देव, कह कबीर मेरा मन।

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्रह्मन बैस सूद अर खत्री

तन पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सार रस तजे आन रस, होए रस मगन डारे दिख खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा, पगत बराबर और न कोए, जैसे पुरैन पात रहे जल समीर।

महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीव वरते प्रभ का लिया किसी का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साले फल आस सब व्यर्थ ही जाय रहा जो दिसे माया मोह कुटुंब

आए मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब चढ़ाई जे तुझ आस अवर करे पर मित्री मत तू जाने तेरे कितने कम आए तुझ आस पर मित्री पाओ दूजा है फिर मैं झूठ दिल सब जाए।

ये लुट के आई है जो छिन में किलवित सब करे बिनाशा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी जिस सेवे सब पुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा जह जाइए तह।

अपनी दिशा बहुत बहुत कदाचार, अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी

आयु मिला सा। जित दिन उनका स्वाव हुए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना चुका सा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुझ उपकर दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जा, तो तिन अंक छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो, इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर, सांत शीतल मन अपना। जैसे सतत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाए। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछान राम रस पावो, ओ उत्तम संत पयो बद बडना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। इक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान इक दीजे, नित बसे हृदय हरि मोहे चरना।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान। जो हर मैल पावे गुरु बचनी, तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिन सजाए ज्यो रंग कुसुम्भ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साक है, ता मेरे मन कायत करी है। रहाओ हर परपंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूर है हर एक दिखाई है।

सो रही है। निकपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवा सब चीज सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौण महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर तब जान।

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जातविकर्ता, निर्गुण कर्ता, सरगुण कर्ता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा। आंक्यो मीन कपक की में आई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भाए ले, पग पारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझित ओड़।

तू लाग परे ओ कुटुंब आयले। ज्यों पंखी एकत्र होए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चायले। जैसे मीन रसन साध दिन से।

ओ तट पर लो निमक मझार, जा की गत निच कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा ते आए, आए न जावे नेचर तने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडारे, सगल कटा देवे आधार, सत पुरुख जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमख जस गाओ, बाल सखाई पगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत, कौन महला पंजवा, नाम संग सीनो व्योहार, नामो ही इस मन का आधार, नामो ही चित कीनी ओट, नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम, मन का इष्ट

कहो नानक सुख सहज निवास गौण महला पंजवा। निमाने को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय रहाओ रंक राव जाके एक समान ईट हस्त सगल पुराण दियो पूछ ना मसलत करे जो किस करे सो आपे करे जाका अंत ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप आकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार नाम रंग पगत पहे लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाये जाके नीत रहाओ। जाके मंत्र हर हर मन वसे जाके उपदेश परम पौनस है जाके कीरत निर्मल सार जाके रेन बांछे संसार कोट पतित जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत को परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई, गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुरु के जानिया, गुरु कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ है जनाई, जिन गुरु मुकत ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता कावन लाग। गौंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अभेयो, सर्व पूज चरण गुर सेयो, गुर

उपकार। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु पूरा पाये वड पागी, गुरु की सेवा दुख न लागी। गुरु का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सोए।

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम तन

रे सबसे ऊंच राम परदास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पत कोवे साध जना पग मल मल तोवे पंच पूत जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रवसार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर से उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ क्यों लागी सह

पास भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण मेला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इतंते मार होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को यह सुहाओ, पद अभिमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर सो मन रंग, जिन तू किया तिसको जान, आगे दर्जे पावे मान, मन तन निर्मल हो।

सोहे दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवै प्रभ नाम। गौण महला पंजवा, धूप दीप सेवा गोपाल, अनेक बार बंदन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग, गुरसो प्रसन्न पै वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण रमत पै आनंद, पार ब्रह्म पूरन बसंद। कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मिलाए। कर्म कर्म इह तत् ज्ञान, साध संग जपिए हर नाम। सागर कर बोहित प्रभ चरण, अंतर जामी प्रभ कारण करण। राख लिए अपनी कृपा तार, पंचदूत पागे विकराल। जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार। गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे। बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपाल दयाल गोविंद। जी जन सगले बख्शिंद, तेरी शरण प्रभ दीन दयाल। पार ब्रह्म जप सदा निहाल। रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, कट कट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पतित पावन प्रभ दीर्घ तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिए भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांसित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरथ दयार, सर्व निधान महा विचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत।

कोई न सके जम काल, जग में आया सो परवान, गुरुमुख अपना खत्म पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद, सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुरु का पूर्ण मंत, हर तन काट किए पंडार, मिल सतगुर सबका सवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गौन महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंत, मां विचार पंच दूते मंत, सौ शरणाई पूरन नाथ, जंत अपने को दी जय हाथ, रहाओ सिमरत।

कर कृपा दी जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा संत का लिया तर्क बिगारो, संत का निंदक आकाश के तारो, संत को राखो अपनी जी नाल, संत उधारो तत्क्षण ताल, सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ

गायण भक्त अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है साध संग जपे निरंकार निंदक कै मुहि लागे छा।

सब लोग संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल खान निंदक से गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले, गौंड नरु मरे नर काम ना आवे।

कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे गौंड। आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कत बिन से गगन न जाए ले मोहि बैर।

कबीर जियो की हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डारियो हस्ती क्रोध मूड में मारियो हस्त पाग के चीसा मारे क्या मूरत के हो।

दिया रहे, तीन बार पतिया पढ़ लीना। मन कठोर अजमूना पतीना, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ, ना एहु जति कहा वैसे हो, ना एहु जोगी ना अवधूता, ना इस माए ना काहू पूता, या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत ना को पाई रहाओ। ना एहु गिरही ना उदासी, ना एहु राज ना तीख मंगासी, ना इस पिंड ना रक्तूराती, ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती, ना एहु तपा कहा वै शेख, ना एहु जीव ना मरता देख, इस मरते को जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत सोवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया, कहो कबीर हो राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान, कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़बो काल, एहो मुंडिया सगलो डब खोई, आवत जात नाक सर होई रहाओ। तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वहाँ का मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंदिन तापे जाहे, एक दोए मंदर एक दोए बात, हमको साथर उनको खात, मूड पलोस कमर बद पोची।

के सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर गौंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारे का होए विनाश।

कार शंख को बिख बिखे संसार कर सीगार बह पखियारी संत की छिटकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिसका बोझ

पग नेवर छनक छन हरी, जो लग प्राण तऊ लग संगे, नाए ता चली बेग उठ नंगे। सुहागन पवन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रख किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है छेदे। सुहागन उर्वार ना पार, पांच नारद के संग विद्वार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे। गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे। कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं चेते। रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये, सूत बिना कैसे मणि परोये। कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए, साधु बिन कैसे अवगत जाइए। जैसे माता पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई। कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अतरूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूछे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम।

जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्ने बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौंड बाणी नाम देव जी।

तौ न पुजे हर कीर्तना मा अपने रामे पजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अछता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पर सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ। जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखई हेरे पर नारी।

खन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुरु पोतक अलख लिखाया जैसे दिखे हेत पल नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गौंड बाणी नाम देव जी की कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम कर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंगले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमे हर हर करत नहीं दुख जमे रहाओ हर हर नाकस हरे प्राण अजय मल की ओ बैकुंठे थान सुआ परावत गन का तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल कातनी कपटे परी सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सुला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली को दिया प्रणव नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा।

मुकुट की बरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, प्रण में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंडे आज नामे बीथल देखिया, मूरख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा राम।

सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पुत माता, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक नीश।

कौ रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड, जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बेथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे, निंदा का करो संसारा, निंदक का प्रगट पौहारा, निंदक सो दुसाद विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया, जोड़

आना अभी कभी किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है कबहू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंगल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू देवे अंते होए सखाई राम करी महला पहला सर्व ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जह पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार कहे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्व रहा भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी

करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरिये जीवतियां क्यों मरिए, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने, पचोली मंगल कहताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली, करते बार न लागे रहाओ, पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे,

प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, तांडे पाओ पवे तुत आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किछ किया सो किछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक पिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सचिया गल्ला दर किया बाता, कहता कहन कहाया, राम कली मेला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कौन बुझे बिग जाने, उत्कुद चलत आप कर चीने, आपे तक पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, किसते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रैन रैन में दिनियर, उसन सीत बिग सोई, ताकि गतमित और न जाने, गुरबिन समझ न होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में त्यान त्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में ज्योत ज्योत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला पहला, जहाँ हर प्रभ कृपा तारी, ताहो में विच्यो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी विचारी, सो हर जन हर प्रभ पावे, एन भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे, रहाओ, कुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुरपूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया, सब नाग देद गुरबाणी, मन राता सारंग पानी, तें तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जह आप गया पौ पागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, राम कली महला पहला, छादन पोजन मांगत पागे, खुदया दुष्ट जले दुख आगे, गुरमत नहीं लीनी, गुरमत पत कोई।

अध तारी राम कला निभ पत सारी तर टूटी गाडो सिर पार लकड़ी बिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

तीजा कर पहला। सतयुग सच कहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सतयुग धर्म तै रहे चार, गुरमुख बूझे को विचार। जुग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई रहाओ। त्रेतै इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम दोए।

गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम किया है भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड़े।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपत नामे सुख पावे हर नामे नाम समावे। गुरमुख पगत करो सब प्राणी हृदय परदास होवे लिव लागे गुरमत हर हर नाम समाणी। रहाओ हीरा रतन जवे हर मानक बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा गुर काड तली दिखलाया। पाग हीन मनमुख नहीं लिया तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा। राम जना मिल पया आनंदा हरनी की कथा सुनाए। गुरमत मेल गई सब निकल सत्संगत मिल बुद पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए जो जो सुने कह सो मुक्ता राम जपत सोहाए। रहाओ जेवर पाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के।

कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे। राव हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे। हम हो चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड पागी, हृदय मन तन प्रीत लगावे। बिन प्रीति करे बहु बाता, कूड़ बोल पूरो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे। हाँ काटो काट बाड सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे। राम कली महला चौथा, जे वड पाग हो वे वड मेरे, जन मिल दिया तिल न लाई है। हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित न लाई है। राम मोको हर जन कारे लाये, हाँ पानी पखा पीसो संत आगे। पग मल मल तूर मुख लाये। रहाओ हर जन वडे वडे वड ऊंचे, जो सतगुर मेल मिलाये। सतगुर जेवड अवर न कोई, मिल सतगुर पुरख त्याये। सतगुर शरण परे तिन पाया, ने ठाकुर लाज रखाये। इक अपने स्वाय आए बहे गुर आ गए, जो बगुल समाध लगाये। बगुला काग नीच की संगत, जाए करंग बिकु मुख लाये। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराये। राम करी महला चौथा, सतगुरु दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगे गुरचरणी, जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखाया। राम में हर हर नाम मन पाया, मैं हर दिन अवर न कोई बेली। मेरा पिता माता हर सखाया। रहाओ मेरे इच्छुन प्राण न रहे बिन प्रीतम, दिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरे से नकते, तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उधारे। जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई। तन तन वड पाग हमारे। रहाओ कोट कोट से तिस्त्यावे, ताका अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे, हृदय मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वडा वडेरा, गुरमुख रखो उरदारे। जे वड पाग होवे ता जपिए, हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट रुकप हर जन है, हर रास है कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारिक हर प्रत पारे। राग राम

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुरका।

पर सब जानो तो दर्जे सुख पाओ। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी। रहाओ पर पंच छोड़े सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई। सतगुर मिलो नवे निड पावो इन विद तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किसो करो बुराई। सतगुर मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी। राम कली महला पंजवा। आवत हरख ना जावत दुखा ने व्यापे मन रोगनी। सदा आनंद गुरपूरा पाया तो उतनी सगल बेगनी। ए विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी। रहाओ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जत कत देखो हर गुनी। मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का ता निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा। त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने। रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने। अचरज किस तैन न जाई बस अगोचर।

सर मेरा अनित राज भोग रस मानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी इक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्ण काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ न कतू जाता बरन न साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा।

हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माफे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जेवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

दीगा काले तेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाले नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खलक त्याग विसूरे सहज आनंद दिखा।

कोई ओडा नील, कोई सुपेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बाँछे तुस्त, कोई सुरजिंदू, कहो नानक जिन हो।

रोवन हार दे ऊट सुदाए, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंद, ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक

पाए, खिंचिया सूत आई खाए, चो में एक मत हो किया। तें बिखरे थान अनक खिड़किया, खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया, क्यों किंकुरी अनूप वाजे।

बैसा कर डंडा करया, क्या तू जोगी गर्दह परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो देहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, त्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा राम कली मेला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दीसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ओसोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले गीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लकबेरा।

तूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ नेमा जाकी जहर गंभीर होए निहाल दे जिस तीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले परया सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप।

अब मोहे जानी रे मेरी दही बलाए, बुझ गई कृष्ण निवारी ममता, गुरपुर लियो समझाए रहाओ, कर कृपा राखियो गुर सरना, गुर पकराए।

गीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पई करतार जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन बेअंत मह माता की के

स्वामी संत जनी परदास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलत मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल बिरधानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माने तेहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन ही बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच सबद तें पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग न

आओ कीर्तन आधार, नीचल आसन बेसुमार, दुगना डोले कतहु जावे, गुर प्रसाद को इहु मेल पावे, प्रमते मोह न माया जाले, सुन समाद प्रभु कृपाले, ताका अंत न पारावारे, आपे गुप्त

संत हमारा राख्या पर्दा, संत प्रसाद मोहे कबू न करदा, संते संग दिया कृपाल, संत सहाय पै दयाल, सुरत मत बुद्ध परदास, गैर गंभीर अपार।

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

कर कर थाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान।

जामी राम करी महला पंजवा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन के चूका ठहराया सत माहे ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का संग।

संज्ञवा संत के संग राम रंग केल आगे जम स्यो हुए न मेल अहंग बुद्ध का पया विनाश दुर्मत होई सगली नाश राम नाम गुण गा

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गप नहीं काई गुरपूरा पेटत उधार राव।

त्याग सतसंगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा। आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक। रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्त तू आप।

परमेश्वर स्वामी काटको प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

नानक करम प्राप्त होए। राम कली महला पंजवा, दुलभ देह सवारे जाहे न दरगे हारे, हालत पलत तुद होए वडियाई, अंत की बेला ले चढ़ाई। राम के गुण गाओ, हालत पलत हो है दोवे सुहेले, अचरज पुरख।

बूढ़त लो साध संग तर नानक जिसे प्राप्त करे राम कली महला पंजवा मन माहे जाप भगवंत गुरपुरे यो दीनो मंत मिटे सगल पै त्रास।

एक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन चरण कमल हर सरन मन तन हर ओही त्याया आनंद।

दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय कर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस पेटत मिटे

दर्शन पेखत हुए निहाल, जहाँ की तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के, जहाँ के

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना पो बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे।

वर्त कपन कर मन नहीं पूजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पूजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन दस ना सके हर कारक।

आवे। तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई। जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई। शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा। शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल।

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका यो तन तन सो फिर लेवे, अंतर कैसा दुख पया। अंत काल किछ साथ न चाले, जो दिस सब तिसे मया। आज पुरख अपरम परसो प्रभु, हर

बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दुख सुख गुरुमुख सम कर जाना, हरख सोग ते बिरकत भया, आप मार गुरुमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया, राम कली दखनी मैला पैला, जप सत संयम साच दृढ़ाया, साच शब्द रस लीना, मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना, एनस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ, रह गगनपुर दृष्ट समय सर, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन परपुर लीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक में सर्व सर्व में एका, ये सतगुर देख दिखाई, जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लखन न जाई, दीपक से दीपक प्रगासिया, त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

नानक शरण प्रभु की छूट, सतगुरु सच सखाई राम कली मैला पहला, औहठ हस्त मलि कर छाया, करण गगन कल तारी, गुरुमुख केती शब्द उधारी, संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है, त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी, मनसा मार मने में राख है, सतगुरु शब्द विचारी, छिन्नी सुरत अनाद बाजे, कटकट ज्योत तुम्हारी, पर पंच बेन कहीं मन राख्या, ब्रह्म अगन पर जारी, पंच तत् मिल एनस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी, राव सच लोके एहो तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी में आसन औदु, अलख अगम अपारी, काया नगरी एहो मन राजा, पंच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कह बपुरे, जीवत मुआ मन मारी,

कर पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा के सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुण दाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख योग शब्द आत्म चिन्ह है हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे।

आवन जान बतूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे हर सुन रह लिव लाए रहा सत संतोख पत कर चोली जोगी अमृत नाम पुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई मन दृढ़ कर आस

फारसे की चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सोजी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करे जे शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेश करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख हो वै सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है।

कहे नानक मुक्त होवे जोगी, साथी रहे समाए राम करी मेला तीजा। भगत खजाना गुरुमुख जाता, सत गुरु बूझ बुझाई, संतो गुरुमुख दे वडियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे, काम क्रोध विचों जाई, आप छोड़ नाम लिव लागी, ममता शब्द जलाई, जिसते उपजे तिसते बिनसे, अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो, रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सो लिव लाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक, वड्डे पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी, बेथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे, पाखंड जोग न पाई। शिव नगरी में आसन बैसे, गुर शब्दी जोग पाई। तातुर बाजी शब्द निवारे, नाम वसे मन आई। यो शरीर सर्वर है संतो, स्नान करे लिवलाई। नाम स्नान करे से जन, निर्मल शब्दे मैल गवाई। त्रैगुण अचेत नाम चेते नाही, बिन नामे बिन सजाई। ब्रह्मा

बूझ बुझाई नानक एक कहे बेनंती नावो गत पत पाई राम कली मेला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरुमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर दिन सब कुछ मेला संतो क्या हो पूज कराई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाई पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाई शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कराए गुरु शब्दी खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाण मन वसाई पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो कूड़ करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पर।

निखंजन मेरा प्रभु अंत सिखाए सब कुछ आपे आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी

एक पेश करें सिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अनदिन भगत करें दिन राती राम नाम उधारी अनदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन भगत न हुई कभी सह पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया।

कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जय मिलिए राम मुरारी, अंग दिन जागत रहे।

जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा। वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रया विस्माद, मेरा प्रभ रहया सर्व थाई।

किन्हि मोन अवतूत सदाया, कोई कहतो अनन पगौते मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्हि पवन सब तरती करया मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुलें

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले जोरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखन हार समार जना

ठाकर को रख लियो चीता, जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिष ठाकर की रहो।

इस सेवक मन आलस करे जिस विश्रिय इक निमुख ना सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना किस सेवा ना कर मारे गुरबोहित वडपाजी मिलिया नानक दास संग पातर करया राम कली मेला पंजवा काहू बिहावे।

ऐसे राखन हार दयाल, जब तक देखो तुम प्रतपाल रहा हो। जल पीवत ज्यों सुखान तंत, तन बिज सह गृह आवत संत। लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार। किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला। प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे कन...

ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौत होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तै टूटे गुर प्रसाद, नानक ते सो सब समाद, राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब के

दर्शन तेतक पाप सब नाशे हर सो देह मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंत हो सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत पूर मुख लाए।

आनक नरक न जाए। काल सियाणप उकत न मेरे पूरे गुरु कमाई। जब तब संयम सुत है सोई आपे करे कराई।

साच कर्म का बेड़ा बांधिया, पवजल पार पवाई, बेसुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई, अकाल मूरत अजूनी संभो, कल अंधकार दिपाई, अंतर जामी जीवन का दाता, देखत तृप्त अघाई, एक अंकार निरंजन निरपो

ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰਿਆਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਰੇ ਨਾਰੀ।

द्वारे पाये तन मन तन सब सौंप गुरु को हुकुम मनिये पाये हुकुम मनियो गुरु के राजा वो सच्ची बानी कहे नान सुनो संतो कचो अकथ कहानी के मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एक परम कुलाया माया का मोहनी किने की जिन ठगोली पाया कुर्बान की तात सैद तू जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया के मन प्यारिया तू सदा

कर्म कमाए कैसे जीव मलिन है कुछ संयम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर्ष रहो चित लाए कह नाम गुरु प्रसादी सहज उपजे क्यों सहसा उजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बिता लिया कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमानी जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सिव की सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आप में समाले आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जो को गुर के दो मुख हो।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ते सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन काहिर लया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एव हुआ समाओ शब्द खेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सख्त आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपसे हुकम

जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कह नानक एवट दाता सो क्यों मनो विसारिए। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया। जाति पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विच माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे वित्तो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन वन जारा, हर रास मेरी मन वन जारा सतगुरु ते रास जाने। हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कित जिच हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहु न पुछना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अमरा सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरा हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदी आया। कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर सब जानी हर नाम।

जग में आए चाहे क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीर राजा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नगरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नगरी आया, गुरु प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक के नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाना गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल।

गुर जाए हर प्रभु पास जियो। सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया,

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभु त्याये सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरुमुख मिल निर्गुनिये।

राम रामा राम रमा कंठ उर्धारी है, उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक पंडार नाम।

कमल आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जानई देख चलत दयाल सुन भगत वखानई जी जंत सब तुझ त्यावे पुरख पत परमेसरा सर्व जाचक ए

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया की।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत म

प्रभ रख को अंचल तां कै लाग जियो। पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो।

बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदपावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया दुख गवाया पई पूरन आस जियो।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रय रंग जागे न छिद्र लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर

आए हरकंत जियो, ग्रहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक।

क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त्र प्राप्त।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदे लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर।

है सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिनकी ती तिन कीमत पाई, और क्या कही है किछ कहन ना जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुरु दिया, खरा खरा आखे सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए, खात पियंत मुए नहीं जानिया, खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया, अस्थिर चीत मरण मन मानिया, गुर कृपा ते नाम पछानिया।

गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात अस

वार वर एक समाल, गुरुमुख मरण जीवन प्रब नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरुमुख गावे गुरुमुख बोले, गुरुमुख तोल तुलावे तोले, गुरुमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरुमुख नाद वेद विचार, गुरुमुख मज्जन चज आचार, गुरुमुख शब्द अमृत है सार, नानक गुरुमुख पावे पार, चंचल चीत न रही ठाए, चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छीजय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

चल जाओ, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मिलाओ, मन दिया गुरु अपने पाया निर्मल नाओ। जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ, जो उसारे सोटा हसी तिस बिन अवर

हर पाया गुर शब्दी विचार, आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार। सोयना रूपा संचिय तन काचा बिखचार, साउ सदाए संच तन दुबदा हुए कुआर। सचियारी सच संचिया

खप खप मोए बिसंख खसम पछाने आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जा पै सदा।

सरत्याय संपै पूर्व लिखे की पाय संपै कारण चातर चोर संपै साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवे छुटे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान।

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द ना चीने सूझ बूझ नहकाए पांदा गुरमुख आखी है।

सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल जाओ।

कट कट बैस निरंतर रही है, चालें सतगुर पाए, सहजे आए हुकम सिधाए, नानक सदा रजाए। आसन बैसन थिर नारायण, ऐसी गुरमत पाए, गुरमुख बूझे।

एहो मन लाया कित बिद आशा मन साखाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई है सार नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आशा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

पाई। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया, अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले, कट कट साचा सर्व जिया, गुर बचनी अवगत समाये, तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी, सेवै सिख सो खोज लह, हुकम विस्माद हुकम पछाने, जी जुगत सत जाने सोई, आप मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कहिए सोई, अवगत तो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचे परम पद पाये, साचे शब्द समाये लिया, एक एको सच एका जाने, हो मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाने, अंतर कमल प्रगास थिया, जीवत मरे ता सब किछ सो

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

तत्तो तत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग म सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन

पार नानक मनमुख ना बुझे गवार कबुद मिटे गुर शब्द विचार सतगुर पेटे मोख द्वार सत ना कीने मनमुख जल जाए दुर्मत विचर चो

नानक पार परे सच भाए, सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय पव जल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे।

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हौ मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुरु ते काल न ग्रासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न साध्या सच न अरा दिया अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आत्म

पियो आत्म सुख तारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसे इहो पवना कहां बसे सो

मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों सस्कार सूर समावे, गुरुमुख हो मैं विच्चों खोवे, तो नानक सहज समावे, इव मन ने चल हृदय वसियले, गुरुमुख मूल पछाण रहे, नाभि पवन कर आसन बैसे, गुरुमुख खोजत तत लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन ज्योत तो शब्द लहे, खावे दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहे, अनहद बाणी गुरुमुख जानी, बिरलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुभाखे, सच रपे रंग कब हू न जावे, जा इहो हिरदा दे न होती, तो मन कै ठहरेता, ना बिकमल अस्तंभ न हो तो, ता पवन कवन कर सहता, रूप न हो तो रेख न काई, ता शब्द कहा लिवलाई, रकत बिंद की

कोई तेरी गत मित तू है जाने क्या को आख वखाने तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग माने साधिक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरे फुरमा।

तीजा परम पुलाई सब जग फिरी फावी होई पाल तो सब सांत ना दे रही क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याय अंतर रखिए उधार नानक का।

दूजे पाए पत खोए, हर नाम कदे ना चेतियो फिर आवन जाना होए, गुर प्रसादी हर मन वसे जम दंड ना लागे कोए, नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए, पौड़ी एक अपनी शक्ति लायन दे सतगुर मत्ती, इक नानो नाउ बख्शियोन अस्थिर हर शक्ति, पौन पानी बैसंतरो हुकुम करे पगती, इना नो पौ अगला पूरी बनत बनती, सब इको हुकुम वर्तदा मने सुख पाई। श्लोक कबीर कसौती राम की चूठा टिके न कोए, राम कसौती सो सहे जो मर जीवा होए, महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मानई हो मैं छड़े न कोए, गुर प्रसादी हो मैं चुटे जीवन मुक्त सो होए।

पैका संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाई जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

को सच कमावे नानक सो तपा मुख अंतर पावे महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले सतगुरु नो मिले शब्द समाले सतगुरु की सेवा ओ तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन उप

सब साजियन रविया सब वन त्रिण सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब देही तो जी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए नाखियन जिनके चित में परम जिस दै दिते नानका ते हो जेहा तरम अभय निरंजन परम पद ताका पूखा होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सब अपना निज कर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तकत सच्चा

पै तन खीण होए लोभ रत विचों जाए ज्यो बैसंतर ताप सुध होए त्यो हर का पौ दुरमत मैल गवाए नानक के जन सोहने जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया ता बनिया सीगार गुर कै शब्द कमल बिकसिया ता सौंपिया भगत भंडार परम गया ता जागया चूका ज्ञान अंधार तिसनो रूप अत अगला जिस हर नाल प्यार सदा रवै फिर अपना सोभावंती नार।

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई, श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म में जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा, मन मुख बोल न जा।

अनुसार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुझ जे वरदाता नाए किस आस सुनाये गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाये रख तत सादा बाहरा सखी वड़ियाये जिसनो बसे तिस दे आप ले मिलाये कप अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसे प्याये।

न कोए, सचो सच वखाणे कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंक फिरे, ना सत मूंड मुदाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब द्रवे, सब कट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे पुलावे कौन, जिसे पुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औहठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास,

0: होशी आए तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे कुछ कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पग तीरा पे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवा पे सब किच हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला। सहन सरदान देन्द्र रो आया परशुराम रोवे कर आया अजय सो रोवे पीछा खाए ऐसी दरगह मिले सजाए।

कर कर मांगे पीछिया जाए, रोवे कृपन संचय तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाए पता।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलनी गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई श्लोक महला दूजा। अंधे कह राहे दसे अंधा होए सुजाए होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एना आखियन जिन

है कोई जिसे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जानिया सच करती सब किस

दे हाल हले में हाली चित चेता वत्तर वक्त संजोग नाव बीज बसीस बोहल दुनिया सगल दरोग नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है मच तप कढोले अंतर प्रगास कट चानना हर लद्दा तोले आपे परम पुलाइंदा किसके न जाई श्लोक महला दूजा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंग न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है,

पार पौड़ी। सो सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चल, सच त्यायन से सच्चे जिन हर फर तम पल, भगत सोन गुण गाउं दे गुरमत अचल, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल, आपे मेल में।

सोई सेवी है सदा सदा जो दे, नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए, अब गुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस है आए पौड़ी, आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन, आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन, एक आपे उज्जड़ पायन एक पगती लायन, जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन, नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध,

प्रसाद जन नानक हर प्रभु बुझिया गुर सत गुर के प्रसाद पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साओ आपे ही खटिया आपे कर पासा।

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजो।

मन तन हुए निहाल बिंदक नगर चास नौ निज नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरणार्थी को सच वैन सुनाई जो तो कर।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

चक्र बनाए माया नो बहुतावे अंदर मैल ना उतरे हो मैं फिर आवे जावे नींद व्याप्या काम संतापया मुखो हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

सतगुर सरवर रतनी पर पूरे जिसनो प्राप्त सो पावे सुख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर के हुकुमावे रतन पदार्थ मानक सरवरे।

बहुतारोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा, मन लागा तुस्मोहा, ठगैसे ती ठग रल आया, साप दे इको जेहा, सतगुर सराफ नगरी विच दो पड़े, ता उगड़ आया लोहा, बहुतेरी थाई रलाए रलाए दिता, उगड़िया पर्दा अग्गे आए खलोहा, सतगुर की जे सरनी आवे, फिर मनूरों कंचन होहा, सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने, अवगुण कट्टे करे सुध देहा।

आपके वैद आप नारायण हैं। यह वैद जी का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस ठायण हैं। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। मेला पंजवा, हुक्म उछले हुक्मे रहे, हुक्मे दुख सुख सम कर सहे, हुक्मे नाम जपे दिन रात, नानक जिसनो होवे दात।

खीलवंत प्रधान हृदय सचाविया, अंतर बाहर एक इकरी ताविया, मन दर्शन की प्यास चरण दासाविया, शोभा बनी सिगार खसम जा राविया।

ना पौड़ी, जिस कैमस्त कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

शुद्ध कर। मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक महला पंजवा। छतरे बाजार सोहन विच व्यापारिये, वखर हिक अपार, नानक खट्टे सोतनी। महला पंजवा।

तीर्थ बर्त नेम सुच संजमे रव सस गहने दियोरे सुरत प्याल सुधा रस अमृत उहो महारस प्योरे निजर धार चुए अत निर्मल ए रस मनु आरा।

ते नरके कोर पचाही। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दौरा दे, हम काहू की कान न कटते अपने गुर प्रसादे।

अरे पौसे आगे बदन पसार रहाओ, पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया न जाई, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे होए सुरन में जूझे, बिन दागे पग जाई, साधु होए सो भगत पछाने।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन इक बिरवा उपजिया, करती जरहर सोखिया। कह कबीर हो।

दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन एक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराध

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिह कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माई।

जिहे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

मंदर सोवे पटंबर तान, सेज सुफाली बिरसै जियो, सो सिमरन तू अंगन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझको है नमाए, सिमर सिमर हर हर मन गाये, यो सिमरन सतगुर ते पाये। सदा सदा सिमर दिन रात,

बंदच बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया। जब नप सिख यो मन कीना तब अंतर मज्जन कीना। पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ।

वेद पुराण शास्त्र अनंका गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजावोगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो।

राम नाम सर तौ न पूजय। अफबान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तौ न पूजय मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय जसरथ राय नंद राजा मेरा। रामचंद्र प्रणवे नामा तत् रस अमृत।

सार सतगुरु प्रसाद इला पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह पराग मन मज्जन करे तिथाई संतो

ते हो ए तैपास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर खाती जागत रहे सुख।

मेरे मन जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास धरे। रहाओ हर हर नाम जपे आराधे, सेवक पाए खरे, किल बिखे दोख गए सब नी करे,

नर नर हरे पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड पागी हर नाम के आवे हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे

बचनी हर तारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरुषोत्तम हर नाम जन गायो सब दालग दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिरसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले मत महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दे आयो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने।

पावै। जन नानक के प्रभु वद में नट महला चौथा, मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभधारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर रुण।

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पय नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा। अपना जन आपे आप उधारियो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नहि विसारियो रहाओ बरन चेन नहि किछ पेख्यो दास का कुल न विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महाविखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो। नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो। नट महला पंजवा चरण

पूरन पूर्व है कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हर पज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होए पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अस्त।

हरे रहाओ, हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पे प्रभु ठाकुर, गुर के शब्द सवारे, मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अगम

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अतमीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध विसारे गुरमत राम नाम तन

त्या बलिहारे पखंड पखंड कर कर तर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जमा।

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाय, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई, परसुआ गणक उधारे, परस न परस पै कुब जाको, ले बैकुंठ सिधारे, अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बुलारे, मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी, जम कंकर मार बिदारे, मान

किछ ना समारे। जब कर मंदर आग लगानी कड कूप कड पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसी है तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल न लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे।

सेवक बहुत अपनी के मन सरदा कर हर तारे मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे एक पुरुष एक नगरी आवे सब एका नगर निहारे हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे अंतरवास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे बन बन टूट

कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभु को जन अंतर हृदय लोचे प्रभु जन के सांस निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभु ठाकुर प्रभु आपे सृष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे।

संगत परम पद पाया पदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब फोकट चार सिवारे। मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखारे।

विचारे निज पर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकतीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतित पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उधारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पचाता। रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया, गुरु मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर शरणा।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाये वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगह बाजिया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर, मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिया, जो लोन जलय गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौरा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास कया गुरु पाया, हर जप्यो प्रम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुम्ब है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे, दंड धर्म राय का लागा। सतसंगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीत बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग नाल है सवागा, हर चारे ओ रंग मिले गुर शोभा।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप, जा कै सिमरन रिद्ध बिगास।

जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंचो मूचो बहु अपार, सिमरत नानक परे।

नैन दर्स पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा के कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जा के दीबान, बे मोहताज नहीं किच कान। सब किच करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौरा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाई, सुख मोह स्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथापदा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड ले हो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांध भगत वचल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा।

तन तन बन खंड बिंद्रावना, जय खेले श्री नारायणा। बेन बजावे गोदन चरे, नामे का स्वामी अनद करे। मेरो बाप मा दो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए। रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारियले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणा।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवे नामा पैने कामा कोठा कुर को दासा रे।

नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े जिनी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला। मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड़े आई मिल माया सुरत गवाई मूर

कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहुर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाए।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस

रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बस निर्मल जल अमृत ना लखस रे रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे मारू महला पहला श्लोक पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना कर।

हवर पला संसार मारू महला पहला। एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ। ना एहो तन जले ना

इस तन बिन कहो किने परम गत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला, सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय, मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे, मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ, अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्राप तज छोड़ तो अप्यो पीजे, मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे, पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे, मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे, मारू मैला पैला, माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत, बोयत जल सिर तरट के, साचा वखर जित, मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत, बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व जोत जग जीवना, सिर सिर साचा लेख रहाओ, ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि शंकर इंद तपे पेखारी, माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी, जंगम जोत जति सन्यासी गुरुपूरे विचारी, बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी, नितनया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान, अंदुले मानक गुर पकड़

ज्ञान रतन मन मांझिए, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटिए मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे,

ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एहो कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुरबचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला

जियो जिसनु साचा शक्ति लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफ्ती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हौ मैं जलिया मनो विसारे।

का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है। तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ। एथे नावो पुल्या फिर हाथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा। पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्या

सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदामे मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाज जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते भाए। गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत करया। तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया। मारू मैला चौथा कर तीजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर हर नाम निधान ले। गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते ले छड़ाए। जिथे अवकट गलियां पीढ़ियां तिथे हर हर मुक्त कराए। मेरे सतगुरा में हर हर नाम दृढ़ाए। मेरा मात पिता सुख बंद को मैं हर बिन अवर नमाए रहाओ। मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिलावे माए। तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। सतगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीन मर जाए। ओए फिर जोन पवाई है मर जम्मे आवे जाए। ओए जम दर बदे मारिये हर दरगे मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लेहो हर राय। हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए। हर जियो आप दयाल होए जन नानक हर मेलाए। मारू महला चौथा हौ पूंजी नाम दसाईदा को दसे हर तन रास। हौ तिस विटो खन खनिए मैं मेले हर प्रभ पास। मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिले मिलास। मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम तन रास। गुरपूरे नाम दृढ़ाया हर तीरक हर साबास राव। हर हर आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास। बिन गुर प्रेम ना लब्बई जन वेखो मन निर्जास। हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास। सागर भगत पंडार हर पूरे सतगुर पास। सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास। मन मुख पाग विहूनिया तिख मोया कंदी पास। गुरदाता दातार है हौ मांगो दान गुर पास। चिरी विछुन्ना मेल प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस। गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास। मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ। गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा वड पागिया। हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है।
गुरपूरे नाम समाणी। मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाओ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई है अकथ कहानी। संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी, मेरे मन तन नाम आधार है।

सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगुण सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समानी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजे गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे विच बिस्ता मन मुख

हर हृदय सदा सदा समाली, हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हौं अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बे संतर डर पे इंद्र विचारा। एका निरपव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ, दे तार अर देवा डर पे। सिद्ध साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पे, केते रूप उपाया। छल बपुरी ए कौला डर पे, अत डर पे धर्म राया। सगल समग्री डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सो है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो। जम कंकर मार बिदारे, मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो शरण द्वारे रहाओ। बाल्मीक सुपचारो तरयो, बद्धिक तरे बिचारे। एक निमख मन माहे अराद्यो, गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलादे, हर नाखस नखे बिदारे। विदर दासी सुत पयो पुनीता, सगले कुल उजारे। कवन पराध बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। आयो साम नानक ओट हर की, लीजे पूजा पसारे। मारू महला पंजवा, वित्न वित प्रम्यो बहु पांते। अनक

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए त्यागो सगला मान मैता दास रेण शरणाए कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चिहन सुन ऊपर छोयो।

ठाकुर तिस्ते मुख नहीं मोरे हो। सहज आनंद रखियो गए पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो। आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जाने हो। जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो। पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया। जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म किरपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई। श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई। अब मोह जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव। काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई। सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई। सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई। पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई। निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस लिवलाई। मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे। छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस।

दुलारयो हस्त पाव चरे खिन पीतर अगन संग ले जा रहे हो मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो रहाओ असाद रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू तारे हो प्रभ विसरत महा दुख पायो एहु नानक तत विचारे हो मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जा के वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गयो

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें एआनथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मान्या।

सूद वै सब एक है नाम तरानत। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानत। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए परग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ विकार पाथर गले बांधे। निंद पोट सिराए महासागर समुंद लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। सुभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

किया था। अनुभव अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तै अमृत नाम चो आया था। टोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक पर

ताओ लागा गोविंद सिंह काल पाई खाए खेत मेरे जमिया निखुट ना कबू जाए पाया अमोल पदार्थ तो छोड़ ना कतू जाए कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने कयो परगा।

कामना दिया मेरे सतगुरु से मर्जन में गावारा, मेरे सतगुरु ही पत राख चीत आवे तब ही पत पूरी, बिसरत रलिए खाक रहाओ रूप रंग खुशियां मन पोगण, केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान।

जिन गुरु मिल हर हर गाया, ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

एक कह शंकर गाडी गढ़ है, एक कह सुखने दाम न छड़ है, राज कमाए करी जिन फैली, ता कह संग न चंचल चलिया, एक कह प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ता कह निकट न

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ताके बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत इकेला जात इकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना

मन तन बासना बहुत विस्तारा, अहमेव मूठो बेचारा, अनेक दोख और बहुत सजाई, ताकि कीमत कह न जाए, प्रभु विसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिसको होत कृपाल स्वामी, सोजन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभु स्वर्णी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभु दयाल दुख दर्द बिगारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण, अंधकूप के काडनहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, मां अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह काव

आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई, अपने को कृपा करियो इस नाम से आई, नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई। मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अपारा।

सत उदारन तारन बल बल बले बल जाये। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय। मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा, यह ओट आधारा।

सगलो भूमंडल खंडल प्रभ तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा, मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाए, लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तेखत सगल त्यानो तजो मन ते अभिमानो, नेचल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा, आन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे, पूरन तृप्त अघाए सह समाज सुभाए, हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया, मारू मेला पंजवा कर छीवा दो पदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियानपा मिल साध त्याग गुमान, और सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान, मेरे मन करन सुन हर नाम, मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम राव, दुख दीन ना पाओ ब्यापे मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान, मारू मेला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते एहने, मेरे मन ना

मूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत ओहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन सह व्यापत उसन न सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू मेला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत पुर मंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कबू नहार मारू मेला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसे प्राप्त नाम

नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीक साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न से

सोड सजले तेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल।

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, पूरद मुख मां गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विचों गर्भ निकल आया।

थापे जी जंत सब किसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया।

रूप प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण।

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो गणताहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में दाम नाम सुधि आई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल फास जब दर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम पजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहाँ होत अब कह पछताए छूटत नाहीं न भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुराग्यो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारू अक्षदियां मैं।

जल बिलो वै जल मथे तत लोड़े अंध ज्ञाना। गुरमति जद मथी है अमृत पाई है नाम निदाना। मन मुख तत न जाननी पशु माई समाना। हों मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार। गुर कह सब दे जे मरे फिर मरे न दूजी वार। गुरमति जग जीवन मन वसे सब कुल उदाहरण हार। सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा। लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा। दूजे पाए कार कमावनी नित तोता है सारा। साची संगत थान सचे सच्चे करवारा। सच्चा पोजन पाओ सचे सच नाम अधारा। सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा। रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा। मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा। मानस दात न हो वही तू दाता सारा। अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा। गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा। नानक मेल न चूकई साके वापारा। मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार। कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार। वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल। बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ। सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार। तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार। तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार। गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए। आवागौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए। गुरमति सहज उपजय सच्चे रह समाए। सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस। पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोष। गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख। मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए। गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए। जम्मन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए। हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए। जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए। जीवन मुकत सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए। तंदे तामत जग बांदिया ना बूझे विचार। जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार। गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार। सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार। सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार। गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार। मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तै जाओ। जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ। मारे राखे एक तू बीजो नाई खाओ। बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं। गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ। अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे। जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए। जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार। आगे पाछे सुख नहीं गाडे लादे चार। विछड़िया मेला नहीं दुख करो जम द्वार। अगे क्या जाना नाहे मैं पूले तू समझाए। पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साच पठायो लेख। मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म विशेख। भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे। जिनकी आतिन

साची कार कमावनी होर लालच बाद एह मन साचै मोहया जेवा सत्साद बिन नावे को रस नहीं होर चलें दिखलाद ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे ज्यों फुरमावे क्यों चला सच लाल प्यारे राव अंदिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है ताने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है लाले गोले मत खरी गुर की मत नी की साची सुरत सुहावनी मन मुख मत पी की मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ तुर की साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या साचे कर साचे रखे गुर वचन सुवाख्या मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी साथा चुगे नित जोगड़ी लग बंद निगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी बाद कारा सब छोड़िया साची तर

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर ताकिए पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेठी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़न से आमूठी बिन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मनमुख लहर कर तज विदूचै अवरा के कर हेर गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटै दुर्मत तू मन के रह दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ पार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग पर बोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो पापे छाणी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत को है नाम न जपे क्यों सुख पावे बिल नावे क्यों सो है मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभिमाना मनुआ डोले दै दिस्तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिक पी रे माया का देवाना कीर्तना मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आस निराश रह सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवाना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उर्धारी नाम बिना नहीं छूटत नानक साची तरकू तारी मारू मैला पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले सफरियो पार अपार करे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास समार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे इत उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड़ कुटुंब क्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले
मेरी मेरी करते छीन खड़े। तन तन बिन सह सह सह सहसा सिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरू दो नैनो नीर तरे। चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे। सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे। विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे। पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे। बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे। खुशी खुआर पै रस भोगण फोकट कर्म विकार करे। नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर धर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे। ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे। हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे। हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

दोहागनी सौर ले क्यों जाओ, मैं गल औगुण मुठड़ी दिन फिर चूर मराओ, तेरे फिर समला सौर ले करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास, लेख निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए, फिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

जाने जिसनो नगर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुर के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे।

कार्तिजा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर कीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नव निध जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा शस्त्र तीखण काट डार्यो मन न कीनो रोस काज ओआ को

चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर महासागर ने व्यापैख ने उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र मित्र सत्र ना कछु जाने सर्वजी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो बिखाद शीत मंद सुगंध चल्यो सर्वथान समान जहां सा किछ ता लागयो तिल न शंका मान सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं साओ न कोई अवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रखपत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुर न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध भेद

बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता। साध संग टूटे हों बंधन एको एक निहालिए। कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा। गुर प्रसाद सुख दुख समझाने कट कट राम हियालिए। संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे। जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए।

साधु चौर टालिए, जो सूरा तिस ही होय मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए, जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम समालिए, मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले, ज्यो ज्यो औध विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पया बेबा, माल जोबन तन चोड वजे सा, करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कानिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मरे

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणिया।

साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाय पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवलाए।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप न लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनक आपे सर्वाणा, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी धरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेल खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे दे वड्याई है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने स्यों लूजे, जो तुझ सेवे से तुझ ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता सुत प्राता, सगले सैल उपाय समाए, अलखना लखना जाई है। कर कर साकी मीत कनेरे, कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर, पाए मिले पहु जाई है। फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दीस है। नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगम अपार है, साचे सिरजनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार।

पर जो निस सुपने पखलाई है तिनको तख्त मिली वड्याई निरपौ मन वस्या लिव लाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभुवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साथ मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हौ मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जी है क्यों सुख पावे दुए पी है निर्मल एक निरंजन दाता गुर पूरे ते पत पाई है जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल न काई है जीव रसाए साचे राती हर प्रभ संगी पौ ना पराती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है रख रख पैर तरे पौ तरना जत कप देखो तेरी सरना दुख सुख दे।

आदि जुगादि अपर अपारे आदि निरंजन खत्म हमारे साचे जोग जुगत विचारे साचे ताड़ी लाई है केतड़िया जुग तुंदू कार ताड़ी लाई सिर जनहार सच नाम सच्ची वड्याई साचे तखत वड़ाई है।

सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वर्त गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है सत युग साच कहे सब कोई सच वर्त है साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे है मनमुख पचे अवाई है मनमुख कदे न दरगे सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सोजी।

करम तरम कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब तीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाह सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कहे प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत तरी परमेश्वर।

की लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगे पैदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बित्रे दुख पाई है। पोजन साच मिले आघाई, नाम रतन साची वड़ियाई, चीने आप पछाने सो।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यो बणत बनाई है, सब की गत मित कोय न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे, साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है, एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है, एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है, एक तीरथ नावे अन्न न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे, राम

साच पछाणो अंदर दूर नाही देखो करनंदर विघन नाही गुरमुख तरकारी क्यों पाव जल पार लंगाई है देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी ना जियो मरे न मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई है ओ निर्मल है नाही अंधियारा ओ आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन में आई जाई है गुर के सेवक सतगुर प्यारे कोई बैसे तक सो शब्द विचारे तत् लहे अंतर्गत जाने सत्संगत साथ वडाई है आप तरे जन पितरा तारे संगत मुक्त सो पार उतारे नानक तिसका लाला गोला जिन गुरमुख हर लिवलाई है मारू मैला पहला केते जुग वरते गुबार ताड़ी लाई अपर अपार तुंदू कार निरालम बैठा ना तद तंद पसारा है जुग छत्ती तिने वरताए ज्यो तिस पाना तिवे चलाए तिसे शरीक न दिसे कोई आपे अपर अपारा है गुप्ते बूजो जुग तत्वारे कट कट वरत उदर मजारे जुग जुग एका एकी वरत कोई बूझे गुर विचारा है बिंद रक्त मिल पिंड सरिया कौन पानी अग्नि मिल गिया आपे चोज करे रंग महली होर माया मोह पसारा है गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम समाले अंतर उदर मजारा है चार पदार्थ ले जग आया शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए, विणनावे गत गया गवाए, दुर्मत अंगला बिनस बिनासे, मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न खूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिरद पया तन खीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे, बिन अब पगती बाद मरीजे, सर अफसर की सार न जाने, जम मारे क्या चारा है, परवृत्ति नरवृत पछाने, गुर के संग शब्द कर जाने, किसी मंदा आँख न चले, सच खरा सच यारा है, साच बिना दर्श जय न कोई, साच शब्द कह जय पत होई, आपे बख्श ले तिस पावे, हों मैं गर्भ निवारा है, गुर कृपा ते हुकम पछाने, जुगे जुगंतर की विद जाने, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण हारा है, मारू मैला पहला, हरसा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल समाले, सो अंतर दाना बीना है, गुर सर्वर हम हंस प्यारे, सागर में रतन लाल बहु सारे, मोती मानक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना है, हर अगम अगाओ अगाध निराला, हर अंत न पाये गुर गोपाला, सतगुर मत तारे तारण हारा, मेल ले रंग लीना है, सतगुर बाजो मुक्त किनेही, ओ आद जुगादी राम स्नेही, दरगे मुक्त करे कर कृपा, बक्से अवगुण की नाहे, सतगुरु दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए, अमृत रख पाए, जम जागात नाही कर लागे।

चौरासी नरक साकत पोगाये, जैसा की कह तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अच पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परा

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

है, दिन हर का नाम विसारा है, सूरज तपै अगन बिख चाला, अपत पशु मन मुख बेताला, आशा मनसा कूर कमावे, रोग बुरा बुरे आ रहा है, मस्तक पार कलर

यम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत विचार आहे। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वडदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे। करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतार।

कूकर कूकर कहिए कूड़ियारा, पौक मरे पौ पौ पौहारा, मनसा चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे।

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखां फुन आगे। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। एनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो। अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सब गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लै चीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोष रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत क्यो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करें अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मूके। बाकी तर्म राय की लीजे, सिर अफरियो पार असारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। हो मैं ममता करदा आया।

सारा है हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मने समाई उठ चलता ठाक रखो कर अपने दुख काटे काटन हारा है हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती।

रे तू समरथ दयाल मुरारी तेरे चोज न जाने कोई तू पूरा पुरख विदाता है तू आद जुगाद करे प्रतपाला घट घट रूप अनूप दयाला ज्यो तुद पावे तिवे चलावे सब तेरो किया कमाता है अंतर ज्योत पली जग जीवन सब कट फो गए हर रस पीवन आपे ले वे आपे दे वे तिहो लोई जगत पित दाता है जगत उपाय खेल।

निराला, कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला, साकत दुरमत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिवराता है, अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा, दिन में पंच तत्व करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, इव मन पीजे शब्द पति जे, बिन नावे क्या टेक की जे, अंतर चोर मुहे कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करें बेताले।

जम कंकर काल पर आता है, जम दर बांधे मिले सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिललावे, जो कुंडी मीन पर आता है, साकत फांसी पड़े अकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाजना बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करें क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो प्रसन, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे, जिन कर चतर तरे विचारे आपे करता कर।

राख है। जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरुमुख सब चलाहा है। सुन सुन आख है कीर्ति बाणी, सुन कही है को अंत न जानी।